0: बल्कि एक ऐसा मूल्य है जो व्यक्ति को महान बनाता है।
1: अभी आपने सुना अनमोल विचार, और अब आरंभ होता है भक्ति रस का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं मातृवंदना संवेद स्वरों में।

श्रोता, अमिताभ मिश्र के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति रस का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:55 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम एग्री टिप्स। आज की जानकारी का विषय है ब्रॉयलर पशुओं की पहचान।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें ब्रॉयलर मुर्गियों में टीकाकरण के संदर्भ में। एक मुर्गी पालक को मुर्गी पालने से पहले मुर्गियों में होने वाली बीमारियों तथा उनके उपचार व लक्षण की सही जानकारी रखनी चाहिए। ऐसी अनेक बीमारियां हैं जिनके लिए सही समय पर सही प्रकार से अगर टीकाकरण किया जाए तो इनके प्रकोप से बचा जा सकता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि अगर मुर्गियों में बीमारी आ जाए तो ऐसे में मुर्गी पालन से हमें ज़्यादा लाभ नहीं होता। मांस वाली मुर्गियाँ यानी ब्रॉयलर, जो कि 7 से 8 सप्ताह के भीतर ही बाजार में बेचने लायक हो जाती हैं, इनमें अगर हमने बीमारियों का सही

0: समय पर नियंत्रण नहीं किया तो हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। इन मुर्गियों में बीमारियां कुछ ज़्यादा जल्दी भी आ जाती हैं, अतः सही समय पर सही प्रकार से टीकाकरण ही बीमारियों से इन मुर्गियों को बचा सकता है। ब्रॉयलर मुर्गियों में टीकाकरण करने से पहले अनेक बातों पर ध्यान देना पड़ता है। आइए देखें ये कौन कौन सी बातें हैं। मुर्गियों को टीकाकरण के ठीक पहले या उसके तुरंत बाद में कीड़े की दवा या चोंच काटने जैसी स्थितियों से नहीं गुजारना चाहिए, क्योंकि इससे मुर्गियां तनाव में आ जाती हैं और नुकसान हो सकता है। सही समय पर कीड़े की दवा देने के बाद आवश्यक टीकाकरण किया जा सकता है। टीकाकरण के दिन ठंडे समय जैसे प्रातःकाल या शाम के समय ही टीकाकरण करना चाहिए। किसान भाइयों, कभी भी दो प्रकार के टीकों को एक साथ मिलाकर नहीं देना चाहिए। इससे इन टीकों में आपस में क्रिया हो सकती है और इसका बुरा प्रभाव मुर्गियों पर हो सकता है। टीकाकरण के बाद और पहले सभी मुर्गियों को बी कॉम्प्लेक्स दवा अवश्य दे दें। जो टीके आप मुर्गियों को देने के लिए बाजार से लाते हैं, उन टीकों को डीप फ्रीजर में ही रखना चाहिए। अगर आप छोटे पैमाने पर मुर्गी पालन करते हैं और आपके पास टीके रखने की उचित व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में टीकाकरण के दिन ही टीकों को ले आएं या फिर पशु चिकित्सा विशेषज्ञ से ज़रूर सलाह कर लें। किसान भाइयों, कड़ाई से टीकाकरण की विधि को अपनाएं, यानी टीकाकरण की जो विधि होती है उसमें किसी तरह का कोई बदलाव अपने सोच समझ के हिसाब से ना करें। घोले गए टीके को तुरंत से तुरंत प्रयोग में लाएं, यानी इसको बहुत समय तक ना रखें। समान उम्र की सभी मुर्गियों का टीकाकरण एक साथ करें। सभी प्रकार की दवाइयों तथा टीकाकरण का पूरा लेखा जोखा रखें। टीकाकरण के बाद सभी खाली बोतलों तथा डिब्बों को जमीन में गाड़ दें। इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें और इसका किसी अन्य काम के लिए इस्तेमाल ना करें। किसान भाइयों, आइए अब देखें ब्रॉयलर मुर्गी में कौन कौन से टीके दिए जाते हैं। 1 से 3 दिन के उम्र के चूज़ों को MD टीकाकरण दें। ये टीका चूज़े की गर्दन में सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। 4 से 7 दिन की अवधि में RDF का टीकाकरण चूज़े के आँख या नाक में डालकर किया जाता है। 14 से 21 दिन की अवधि में IBD टीकाकरण चूज़े की आँख में टीका डालकर किया जाता है। 42 से 45 दिन की अवधि में IBD टीकाकरण का टीका मुंह के द्वारा दिया जाता है। 35वें दिन ब्रॉयलर चूज़ों को RDV का टीकाकरण मुंह में डालकर किया जाता है। किसान भाइयों, इस प्रकार से समय पर टीकाकरण कर आप ब्रॉयलर मुर्गी पालन से लाभान्वित हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निकट के पशु चिकित्सा केंद्र से सलाह लें।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एग्री टिप्स। आज की जानकारी का विषय था ब्रॉयलर मुर्गियों में टीकाकरण। आपको जानकारी दे रहे थे शिबू जॉर्ज। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुई संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of

वापस लौटेगा। एमवी भारत सीमा की अगली यात्रा होगी इसी मार्ग के लिए 4 जुलाई को रात्रि 8 बजे। एमवी भारत सीमा लिटिल अंडमान के लिए आज सुबह 8 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और आज ही रात्रि 9 बजे लिटिल अंडमान से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कानिकोबार के लिए आज सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और कल शाम 4 बजे कानिकोबार से चलकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी कालीघाट की अगली यात्रा होगी इसी मार्ग के लिए 3 जुलाई को सुबह 7 बजे। एमवी नालंदा के स्थान पर अब एमवी कैंबलबे नानकौरी होते हुए कैंबलबे के लिए कल 29 तारीख को रात्रि 9 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और 1 जुलाई को सुबह 10 बजे कैंबलबे से चलकर नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी भारत सीमा मायाबंदर होते हुए डिगलीपोर के लिए कल 29 जून को रात्रि 8 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और परसों 30 जून को दोपहर बाद 2 बजे डिगलीपुर से चलकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम

एमवी हटबे शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा व दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप जाने के लिए आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत जाने के लिए कल सोमवार 29 तारीख को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप के लिए कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप के लिए कल 29 जून को सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। वो कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रंगत रंगत जाने के लिए कल सोमवार 29 तारीख को सुबह 7 श्री विजयपुरम से चलेगा और परसों मंगलवार 30 तारीख को सुबह 7 रंगत से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। जाते और आते समय यह जलयान शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड और लॉन्ग आइलैंड में भी रुकेगा। जलयानों का यात्रा कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी के इस सुरीले सफर इंद्रधनुष में आपका हार्दिक स्वागत है। संगीत केवल एक मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि भावनाओं को अभिव्यक्त करने का सबसे सुंदर तरीका भी है। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सीधे दिल को छू लेते हैं और कुछ ऐसे जो हमारी धड़कनों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। आज के इस अंक में हम बात करेंगे धड़कनों से जुड़े उन्हीं मधुर एहसासों की जो जीवन को और भी खूबसूरत बना देते हैं। कहते हैं इंसान की सबसे सच्ची भाषा उसकी धड़कने होती है। खुशी हो, इंतजार हो, अपनापन हो या कोई मीठी सी याद, हर एहसास की गूंज दिल तक पहुँचती है और धड़कनों में बस जाती है।

दोस्तों, जब जीवन में कोई नया एहसास दस्तक देता है तो मन की दुनिया बदलने लगती है। छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगने लगती हैं और साधारण से पल भी यादगार बन जाते हैं। दिल की धड़कने भी जैसे उसी खुशी का संगीत बन जाती है। कभी कभी कुछ पल ऐसे आते हैं जब शब्द साथ छोड़ देते हैं और केवल एहसास बाकी रह जाते हैं। उन पलों में दिल अपनी अलग कहानी कहता है, जिसे सुनने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं होती।

जीवन की खूबसूरती इसी बात में है कि हर दिन हमें कुछ नया महसूस करने का अवसर देता है। रिश्तों की गर्माहट, अपनों का साथ और मन में बसे सपने, ये सब मिलकर दिल को एक नई ऊर्जा देते हैं। और जब दिल खुश हो तो उसकी धड़कनों में भी एक अलग ही मिठास सुनाई देती है। कहते हैं कुछ भावनाएं ऐसी होती है जो धीरे धीरे दिल में जगह बनाती है और फिर हमेशा के लिए उसका हिस्सा बन जाती है। उनकी मौजूदगी से हर धड़कन में एक नई रवानी आ जाती है।

0: दिल की धड़कनों में छिपे हैं जिंदगी के सारे राज, कभी खुशी की सरगम कभी यादों का साज। मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए, क्योंकि धड़कनों की यही रवानी जीवन को बनाती है खास। श्रोताओं, धड़कनों की इन खूबसूरत रंगों के साथ कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अब दीजिए अपनी दोस्त श्री विद्या को इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इंद्रधनुष कार्यक्रम। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी श्री विद्या। इस समय सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए रामचरित मानस गान की 283वीं कड़ी।

अपने को समर्पित कर देने के लिए रावण ने सीता को एक माह का समय दिया था। इस अवधि की समाप्ति पर सीता जी के लिए अपना अंत हो जाने से अधिक व्याकुलता का कारण पतिवियोग है। वो त्रिजटा से कुछ ऐसा उपाय करने की प्रार्थना करती हैं जिससे वो शीघ्र शरीर त्याग कर सकें।

त्रिजटा उन्हें धीरज बंधाती हैं। हताश सीता अशोक वृक्ष से प्रार्थना करती हैं, तुम्हारे नए कोमल पत्ते अग्नि के समान दिख रहे हैं, तुम ही मुझ पर अग्नि वर्षा कर दो ताकि मेरी विरह व्यथा का अंत हो जाए। अशोक वृक्ष की डाल पर बैठे हनुमान जनक नंदिनी के शोक सने वचन सुनकर विचलित हो जाते हैं। वह श्रीराम की अंगूठी सीता जी के सामने गिरा देते हैं। मुद्रिका पहचान कर सीता जी को आश्चर्य होता है। श्रीराम की महिमा के गान के स्वर सुनकर वह राम कथा रूपी अमृत बरसाने वाले से अपने सामने प्रकट होने की प्रार्थना करती हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान की 283वीं कड़ी। गायक कलाकार थे शोभना राव और कविता कृष्णमूर्ति तथा संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। इस समय सवेरे के 6:40 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए वतन के गीत कार्यक्रम के तहत कुछ देश गान।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम के बारे में बताया जाता है कि तेज हवा के चलते वायु की गति लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से रहेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 1 जुलाई तक समुद्र में न जाए। आज दोपहर तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होगी। ये थी मौसम की जानकारी। और अब एक नज़र आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

सवेरे 7:15 पर आप सुनेंगे देशवाग्नि कार्यक्रम। ठीक इसी समय विविध भारती मुंबई से सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सवेरे 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का समय रहेगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर आप विभिन्न कलाकारों को सुनेंगे। सुबह 9:00 बाल जगत कार्यक्रम में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जानकारी दी जाएगी और वन महोत्सव पर चर्चा होगी व आप जानकारी प्राप्त करेंगे समर ब्रेक के बाद। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 9:30 पर आप पंडित भीम

जोशी का गायन सुनेंगे। सुबह 10 बजे सुने लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दिन के 11 बजे आप सुनेंगे मन की बात के तहत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों को संबोधन का सीधा प्रसारण, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तेलुगु कार्यक्रम में दोपहर 12 बजे पुराने फिल्मी गाने सुनवाए जाएंगे। दोपहर 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रुति मधुरम तथा पुराने फिल्मी गीत प्रसारित किया जाएगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 1:10 पर फनकार होंगे गुलाम अली और जगजीत सिंह। दोपहर 1:30 पर घर संसार कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा वन महोत्सव। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर सभा का समापन होगा, जबकि एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर हमारा स्थानीय सभा जारी रहेगी गीत लहरी कार्यक्रम के साथ। दोपहर बाद 3 बजे सुनिए कार्यक्रम एल्बम टाइम्स। 3:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा चक्करगांव के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत भक्ति गीत होगा। शाम 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 20वीं कड़ी आप सुनेंगे। 4:40 पर सुनिए कार्यक्रमों का विवरण और शाम 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम।

शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम में निंजम मरुपदले के तहत पुराने फिल्मी गाने सुनवाए जाएंगे तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना पर चर्चा होगी। बांग्ला कार्यक्रम में शाम 5:30 पर सुविचार के साथ बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा। संध्या 6 बजे संगीत संगिनी कार्यक्रम। धरती के गीत कार्यक्रम में संध्या 6:30 पर आप हिमाचली लोकगीत सुनेंगे। 6:45 पर देशगान कार्यक्रम। संध्या 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। 7:20 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 7:30 पर युवाणी के तहत लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो म्यूजिक लवर्स। रात्रि 8 बजे चित्रपट संगीत कार्यक्रम। 8:30 पर रोजगार समाचार और उसके बाद आप सुनेंगे गौरव गान कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम रेडियो स्कोप और रात 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के कार्यक्रम में पंडित सुधीर पांडे का तबला वादन और विद्वान एन एस कल्याण रमन का मृदंगम वादन आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ता विभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन वार्ता प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणं आकाशवाण्या क्षेत्रीय भाषासु अपि भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सहयोगस्य पूर्णव्याप्तेः समीक्षां करिष्यतः तथा च परस्परस्य क्षेत्रीयान्तराष्ट्रिय विषयेषु मतानाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। अद्य प्रधानमंत्री श्रीमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रिय सभां सम्बोधयिष्यति। भारतीय प्रवासी सदस्यैः सह संवादमपि विधास्यति। पश्चात् प्रधानमंत्री रोश कैमन इत्यत्र राष्ट्रिय दिवस समारोहे भागं भजिष्यति। मंत्रालयेन उक्तं यत् भारतीय रक्षाबलानां एकेन दलेन सह भारतीय नौसेनायाः द्वाभ्यां नौकाभ्यां सह श्रीमोदी उत्सवे भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमंत्री श्रीमोदी ह्यः सेशेल्स देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां विक्टोरिया नगरं सम्प्राप्तवान्। विमानस्थानके सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन तस्य भव्यं स्वागतं विहितम्। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः भारतीय समवाय विशेषान् भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार संधेः CETA इत्यस्यान्तर्गतम् उदयोन्मुखावसरान् सुस्थिर व्यापार वृद्धौ परिवर्तयितुं यूके देशस्य समकक्षैः सह सम्पर्कं सुदृढं कर्तुं प्रार्थयत्। लंदन नगरे भारत यूके प्रगति व्यापार पूर्ण सम्मेलने सहभागिनां नेतृत्वावधौ मन्त्रिणा इदमुक्तम्। दिल्ल्याः मुख्यमंत्री रेखा गुप्तावर्या सावधानं कृतवती यत् यानि कोचिंग इति प्रशिक्षण केन्द्राणि अनिवार्य सुरक्षा मानदण्डानां पालनं न करिष्यन्ति तानि दिल्ल्यां कार्यं कर्तुं नानुमन्यन्ते। एकस्मिन् वीडियो संदेश श्रीमती गुप्ता अवदत् यत् दिल्ली सर्वकारः शीघ्रमेव कठोरं निरीक्षणं बृहत्तरं उत्तरदायित्वं छात्राणां सुरक्षां च सुनिश्चेतुं दृढं विनियामक विधिं प्रावर्तयिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रदेशेषु अत्यधिक वृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। बिहार छत्तीसगढ़ कर्नाटक कोंकण गोवा ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल तेलंगाना विदर्भ लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीपेषु अपि आगामी दिनद्वयोः कृते विभागेन संचेतना प्रसारिता अस्ति। ऋतु विभागेन ख्यापितं यत् श्वः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थितिं भविष्यति। फीफा विश्वकप क्रीडायां इंग्लैंड देशेन अद्य प्रातः अमेरिका देशस्य न्यूजर्सी क्रीडांगणे स्वस्य ग्रुप एल क्रीडायां पनामा देशं 2-0 इत्यंकैः पराजितम्। प्रियाः श्रोतारः संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 11:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 7 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए जन सूचनाएं। आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 6.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 97% तथा न्यूनतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस

रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्रीविजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 30 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय आज 4:58 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 5:47। और अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान उड़ान संख्या 2937 आज दिन के 11 बजे श्रीविजयपुरम पहुंचेगा और विमान संख्या 2936 श्रीविजयपुरम से दिल्ली के लिए वापसी उड़ान भरेगा आज दिन के 11:40 पर। तो ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। एक आवश्यक सूचना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों 31 जुलाई 2026 तक की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं सांस्कृतिक तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://award.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। सूचना समाप्त हुई।

0: श्रोताओं, आज सुबह 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप विभिन्न कलाकारों को सुनेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 9:30 पर आप सुनेंगे पंडित भीमसेन जोशी का गायन। सुबह 10 बजे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश का समय रहेगा। जन सूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 MHz पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस ब्रेक के बाद।
1: राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 28 जून 2026।
2: नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल ना जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक मिलाना है हर बार, 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार।
1: जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 28 जून 2026।

मुख्य समाचार। मन की बात के 135वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश विदेश के लोगों के साथ आकाशवाणी के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस पर उपराज्यपाल ने जनप्रतिनिधियों और संगठनों से सहयोग का आह्वान किया है। और ITF मैदान में मॉनसून कार्निवल बना आकर्षण का केंद्र, स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों ने मिलकर संस्कृति और स्वाद का उत्सव मनाया।

सुबह के समाचारों के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों

से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर कल दोपहर विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मनी ने उनका स्वागत किया। श्री मोदी ने हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत की सराहना की। प्रधानमंत्री श्री मोदी सेशल्स की आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वह सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम

गर्मजोशी भरे स्वागत की सराहना की। प्रधानमंत्री श्री मोदी सेशल्स की आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वह सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं, विशेषकर जानलेवा और गंभीर चोट वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने प्रवर्तन अभियान तेज कर दिया है। परिवहन सचिव के निर्देश पर शुक्रवार को सिप्पी घाट और ब्रिजगंज क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य मोटर वाहन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के साथ वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना था। जांच के दौरान दोपहिया, तिपहिया, हल्के एवं भारी मालवाहक वाहनों, ट्रकों और बसों सहित कुल 93 वाहनों की जांच की गई। इनमें 17 वाहन विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए गए, जिनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। उल्लंघनकर्ताओं से कुल 40,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। अभियान के दौरान सभी चालकों को सड़क सुरक्षा और मोटर वाहन कानूनों के पालन के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। लंबालाइन क्षेत्र में अंडमान निकोबार लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त जल पाइपलाइन की आपातकालीन मरम्मत को देखते हुए विद्युत विभाग ने आज कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद रखने की घोषणा की है। विभाग के अनुसार सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक डेयरी फॉर्म जंक्शन, CPWD कॉम्प्लेक्स, लंबा लाइन, स्कूल लाइन, मिनी बे के कुछ हिस्सों, गुरुद्वारा लेन के एक भाग, बंगाली क्लब, बिगी लाइन, मिडिल पॉइंट, लिंक रोड, VIP रोड, पुलिस लाइन तथा जंगली घाट के कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस और मॉनसून कार्निवल। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान 5 वर्ष आयु वर्ग तक के सभी बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाई जाएगी, ताकि देश में पोलियो वायरस के दोबारा प्रवेश की किसी भी आशंका को रोका जा सके और भारत की पोलियो मुक्त स्थिति सुरक्षित बनी रहे। इस अवसर पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी ने पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों, सामुदायिक नेताओं तथा जमीनी स्तर पर कार्यरत सभी कार्यकर्ताओं से अभियान में सक्रिय सहयोग और भागीदारी की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी के संयुक्त प्रयासों से राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस को सफल बनाकर बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया जा सकता है, ताकि भारत आने वाली पीढ़ियों तक पोलियो मुक्त बना रहे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश अनुसार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आज राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस मनाया जाएगा। अगले 2 दिनों तक स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर जाकर ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें टीका लगाया जाएगा जो किसी कारणवश बूथ तक नहीं पहुंच सके। अभियान का शुभारंभ आज सुबह 8:30 बजे शहरी स्वास्थ्य केंद्र जंगली घाट में आयोजित समारोह से होगा, जहां गणमान्य अतिथि पात्र बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाकर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस वर्ष द्वीप समूह में 447 पोलियो बूथों पर लगभग 19,343 बच्चों को टीका लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हवाई अड्डे, बंदरगाह तथा अन्य ट्रांजिट पॉइंट पर भी विशेष पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। साथ ही पर्यटकों एवं वन क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को भी अभियान के दायरे में शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे आज अपने बच्चों को निकटतम पोलियो बूथ पर ले जाकर पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। ITF ग्राउंड में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मॉनसून फूड एवं स्पाइस फेस्टिवल 2026 के दूसरे दिन मॉनसून फ्लेवर्स थीम के साथ देश की विविध पाक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का

आकर्षक संगम देखने को मिला। विभिन्न राज्यों के व्यंजनों से सजे फूड स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने, वहीं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने शाम को जीवंत बना दिया। पर्यटन कैलेंडर के प्रमुख आयोजनों में शामिल मॉनसून कार्निवल द्वीपों की बहु सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के साथ पर्यटन संवर्धन और एकता में विविधता का संदेश दे रहा है। प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक चल रहे इस महोत्सव में स्थानीय विक्रेताओं, स्वयं सहायता समूह और सांस्कृतिक संगठनों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक व्यंजन प्रस्तुत किए। स्टॉल नंबर 22 पर शिक्षा निदेशालय के सहयोग से शतरंज और आर्म रेसलिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सांस्कृतिक संध्या में अंडमान आइलैंड्स फिल्म सोसाइटी, डांस नृत्य अकादमी, मेलोडी मिक्स बैंड तथा अंडमान निकोबार प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। पर्यटन विभाग ने लोगों से आज पुरस्कार वितरण समारोह के साथ संपन्न होने वाले मॉनसून कार्निवल 2026 में शामिल होने की अपील की है। मुख्य भूमि से अंडमान आ रहे 2 यात्री जहाज आज हेडुजेटी पहुंचेंगे। जहाजरानी सेवा निदेशालय के अनुसार विशाखापत्तनम से रवाना हुआ एमवी स्वराज द्वीप आज 8 बजे पहुंचेगा, वहीं चेन्नई से रवाना हुआ एमवी कैंबल बे की सुबह 10 बजे पहुंचने की संभावना है। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आगामी दिनों के दौरान मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल द्वीपों के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। खराब समुद्री परिस्थितियों को देखते हुए मछुआरों को इस अवधि में समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। साथ ही लोगों से मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मन की बात के 135वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश विदेश के लोगों के साथ आकाशवाणी के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस पर उपराज्यपाल ने जन प्रतिनिधियों और संगठनों से सहयोग का आह्वान किया है। और ITF मैदान में मॉनसून कार्निवल बना आकर्षण का केंद्र, स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों ने मिलकर संस्कृति और स्वाद का उत्सव मनाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:15 हो चुके हैं। अब लीजिए सुनिए देश रागनी।

देशभक्ति की भावना हमारी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रप्रेम से सराबोर देशरागनी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं एक ऐसे गीत से जो मातृभूमि के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना को स्वर देता है। इसमें अपनी मिट्टी की सुगंध, अपने जड़ों की पुकार कि हमारी असली पहचान हमारे देश से ही है और हर हृदय में कहीं ना कहीं अपने वतन की एक अनमोल जगह बनी रहती है।

श्रोताओं, हमारा देश अनेक भाषाओं और परंपराओं का अनुपम संगम है। यही विविधता भारत की सबसे बड़ी शक्ति और उसकी अनोखी पहचान है, जो भारत की मिट्टी की सौंधी खुशबू और अपनेपन की मधुर अनुभूति को सजीव कर देता है।

0: श्रोताओं, सीमा पर जटा सैनिक जब अपने प्राणों की बाजी लगाता है तब उसके हृदय में केवल एक ही भावना होती है और वो मातृभूमि की रक्षा। जी हाँ, शहीद कभी नहीं मरते, वे अपने त्याग से हर भारतीय के दिलों में जीवित रहते हैं।
1: कर चले हम पिता जान तन।

0: तो श्रोताओं, अब देशराग्नि कार्यक्रम का यह सफर यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

नए दिन की नई उमंग, नई ऊर्जा और सकारात्मक विचारों के साथ आपका स्वागत है गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं मधुर और मनमोहक गीत जो आपके मन को सुकून और आनंद से भर देंगे। तो आइए संगीत की सुरमय दुनिया में खो जाते हैं। तो सुनते हैं एक्शन रिप्ले फिल्म का गाना, श्रेया घोषाल के स्वर में बोल इरशाद कामिल के, संगीत दिया है प्रीतम ने।

0: श्रोताओं, ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे कुछ और गीतों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।
1: तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान। शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1 लाख दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: आरबीआई कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: Online applications are invited from unmarried men and women candidates for grant of short service commission in executive, education and technical branch. Last date for submission of online application is 27 July 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar.
0: श्रोताओं, अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में। और इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में समय हुआ है सवेरे के 7:46 और 59 सेकेंड। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म ब्रेक के बाद का गाना, विशाल ददलानी और अलाइसा मेंडोसा की आवाज़ों में।

फरहान अख्तर और साथियों की आवाज़ों में अब लीजिए सुनिए जिंदगी न मिलेगी दोबारा फिल्म का गीत, बोल जावेद अख्तर के संगीत शंकर एहसान लॉय का।

श्रोताओं, अब सुनिए गोलमाल फिल्म का गाना नीरज श्रीधर और अंतरा मित्रा के स्वरों में। कुमार के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

Coming in the Mind. श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम। सुबह के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
2: Today we have a new national health policy.
3: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
2: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
4: महाराष्ट्र में जो टीईटी की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के डीसीपी जोन 2 पवन बंसोड़ इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले टीईटी के 4 पेपर जब्त किए है। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
0: इस घटना के बाद आज होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
5: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की

0: यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
3: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
4: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों

0: कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
2: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
3: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं, इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमरीका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे, जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गईं। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो GM मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा जुपोन सर्कल बिजनेस इम्प्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन

0: किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूजोन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गस्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हरिहरन, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, पंकज उदास, नूर जहां, नीना मेहता और राजेंद्र मेहता के स्वरों में चंद बेहतरीन गजलें।

0: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
1: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
0: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
1: मैं 14 साल की हूँ।
0: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
1: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
0: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
1: धन्यवाद दीदी।
0: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल YouWin पर रजिस्टर करना मत भूलना।
2: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.youwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: HIV AIDS से जुड़े सभी सवालों के लिए आज ही टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। नैको व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, इस समय सुबह के 9 बज चुके हैं और अब बच्चे अपना कार्यक्रम सुनेंगे बाल जगत।

बाल जगत कार्यक्रम सुनने वाले मेरी प्यारी नन्हे दोस्तों को गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो स्टेशन, मैं हूँ आपकी रीता दीदी। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों। क्या आपने आज खिड़की से बाहर देखा, पेड़ पौधे कितने प्यारे लग रहे होंगे, है ना? आज हम बात करेंगे वन महोत्सव के बारे में, वह उत्सव जो हमारे प्रकृति के काफी करीब है। बारिश की बूंदे नन्हे पौधे को जीवन प्रदान करती है। यह समय है जब धरती खुद को सजाने के लिए तैयार होती है। दोस्तों, आपने KM मुंशी जी का नाम तो सुना ही होगा, है ना? उन्होंने देखा था एक सपना हरे भरे भारत का। उन्होंने इस सपने को पेड़ लगाओ आंदोलन के रूप में शुरू किया। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर पेड़ ना होते तो क्या होता? पेड़ हमारे असली ऑक्सीजन सिलेंडर है। वे कार्बन डाइऑक्साइड पीते हैं और हमें शुद्ध हवा देते हैं, है ना? दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि किसी पेड़ की छांव में खड़े होने पर कितनी ठंडक मिलती है ना? साथ ही पेड़ ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ हमारे सबसे बड़े सिपाही हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को ऐसे पकड़कर रखती है जैसे हम अपने दोस्तों का हाथ पकड़ते हैं, जिससे बाढ़ का खतरा कम हो जाता है,

दोस्तों, आप बच्चों के लिए एक छोटा सा ग्रीन मिशन। अब आप सोच रहे होंगे, हम तो छोटे बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो सुनिए दोस्तों, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने जन्मदिन पर केक काटने के साथ साथ एक पौधा लगाने की परंपरा शुरू करें। जो पौधा आप लगाएंगे उसका एक प्यारा सा नाम भी रखें। जब आप उसे नाम देते हैं तो वह आपका दोस्त बन जाता है। आप सभी पानी का रिसाइकल करें। अब आप कहेंगे कि कैसे? आपके घर पर सब्जियों को धोने के बाद बचे पानी को पौधे में डालें, फल खाने के बाद उसके बीज ना फेंके, उसे सुखाकर किसी खाली जगह पर डाल दें, वह बारिश में खुद पौधे बन जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आपने एक पुरानी कहावत तो सुनी होगी, जब आप पेड़ लगाते हैं तो आप खुद के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए छांव का इंतजाम कर रहे होते हैं। कल्पना कीजिए, आज जो पौधा आप लगाएंगे 10 साल बाद वह एक विशाल पेड़ बनकर कितने पक्षियों को घर देगा और कितने लोगों को छाया देगा। तो चलिए इसी बातों के साथ गीतों की ओर ले चलते हैं आप सभी को।

तो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आज का हमारा रेडियो मंत्र है एक बच्चा एक पेड़। आप सब आज एक वादा करें दोस्तों, अपने स्कूल, अपने घर या अपने आसपास के किसी कोने को हरा भरा बनाएं। दोस्तों, आपने उष्णकटिबंधीय शब्द सुना है या सुनने में थोड़ा कठिन लगता है ना? तो चलिए जानते हैं आज इस शब्द का मतलब। हमारी पृथ्वी को अगर हम बीच से देखें तो भूमध्य रेखा के आसपास का जो हिस्सा है, जहाँ खूब गर्मी और बारिश होती है, उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ये मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का इलाका होता है। अब आप कहेंगे, जहाँ हमेशा धूप खिली रहती है और खूब सारे पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ के जंगल, जिन्हें हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं, दुनिया के फेफड़े हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं। आप जानना चाहोगे ना कि वहाँ कौन कौन से जानवर रहते हैं? वहाँ इतनी विविधताएं हैं कि आप हैरान हो जाओगे। वहाँ चमकीले रंग के तोते, लंबी गर्दन वाले जिराफ, खतरनाक टाइगर और पेड़ पर कूदने वाले बंदरों की ऐसी प्रजातियां हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। और पता है दोस्तों, दुनिया के आधे से ज्यादा पौधे और जानवर इन्हीं इलाकों में पाए जाते हैं। ये तो एक बड़े चिड़ियाघर जैसा ही लगता है। इस खूबसूरत दुनिया पर खतरा भी है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ की बर्फ पिघल रही है और पेड़ों को काट कर वहाँ फैक्ट्रियां बनाई जा रही है। तो दोस्तों, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें, अपने आसपास पेड़ लगाएं और बिजली बचाएं। छोटे छोटे कदम ही बड़ी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारियां तो चलती ही रहेगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्विज आप सभी के लिए। तो चलिए प्रश्न जानते हैं, क्या है आज का। उष्णकटिबंधीय जंगलों को दुनिया का फेफड़ा क्यों कहते हैं? सोचिए सोचिए दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब जानेंगे कार्यक्रम के अंत में। प्रकृति हमारी दोस्त है, हमें इसे बचाना है। तो आप सब बच्चे भी आज एक संकल्प लें कि आप कम से कम एक पौधा जरूर लगाएंगे। समर ब्रेक के बाद जब आप स्कूल जाओ तो अपने स्कूल के बगीचे में एक पौधा अवश्य लगाओ। नन्हे दोस्तों, आप सभी की प्यारी छुट्टियां बस अब खत्म होने जा रही है इस गीत के जैसे।

छुट्टियों में किसी ने पहाड़ देखे होंगे तो किसी ने दादा दादी के गांव की सैर की होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती पर कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां गर्मियों की छुट्टियां

भी खत्म ही नहीं होती। जी हाँ, हमने बात की थी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की, जहाँ सूरज की रोशनी साल भर सीधी पड़ती है, इसीलिए यहाँ दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है और मौसम हमेशा गुनगुना रहता है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, इसीलिए यहाँ दुनिया के सबसे घने और जादुई रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन्हें पृथ्वी का ग्रीन हार्ट यानी हरा हृदय भी कहा जाता है। दोस्तों, घर बारा लुट रहा ये चमन,

नन्ही दोस्तों, हमने सीखा कि एक छोटा सा बीज जब उसे सही प्यार और पानी मिले तो वह विशाल वट वृक्ष बन जाता है। हमने जाना कि पेड़ हमारे लिए सिर्फ लकड़ी या फल नहीं देते, बल्कि वे हमें सांसें देते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक बड़ा पेड़ प्रतिदिन लगभग 4 लोगों के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है? आप सभी अब प्रकृति के छोटे रक्षक बन चुके हैं दोस्तों। अक्सर हम जोश में पेड़ तो लगा देते हैं, लेकिन बाद में उसे भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आज आप सभी मुझसे एक वादा कीजिए, एक पौधा लगाना बहादुरी का काम है, लेकिन उसे जीवित रखना सच्ची ईमानदारी है। आज अपने पौधे को पानी दिया।

से जानवरों से बचाने के लिए घेरा बनाया। याद रखिए, एक पौधा जिसे आपने अपने हाथों से लगाया है वह आपकी दोस्ती का प्रतीक है, उसे सूखने ना दे। बच्चों, क्या आपने कभी किसी पेड़ को ध्यान से देखा है? उसकी टहनियाँ आपकी ओर हाथ बढ़ाकर दोस्ती का इशारा करती हैं। जब गर्मियों में आप किसी पेड़ की ठंडी छाया में बैठते हैं तो वह आपको अपनी गोद में बिठाकर कहता है, घबराओ मत, मैं हूँ ना। आज से जब भी आप किसी पेड़ के पास से गुजरे तो उसे बस एक नजर देखिएगा और शुक्रिया कहिए, जो हमें इतना कुछ बिना मांगे देते हैं, क्या हम उनकी सुरक्षा का वादा नहीं कर सकते? तो दोस्तों, हम सब मिलकर एक शपथ लेते हैं कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे, हर साल कम से कम एक पेड़ लगाएंगे और उसकी देखभाल भी करेंगे, आसपास हरियाली फैलाने में अपने दोस्तों और परिवारों की मदद करेंगे। धरती माँ को बचाना अब हमारा कर्तव्य है। आप सभी ने आज एक बहुत बड़ा संकल्प लिया। वन महोत्सव तो एक बस बहाना है, असली मकसद तो धरती को रहने लायक सुंदर बनाना है। जाइए, आज ही अपने लगाए हुए पौधे को देखिए, उसे प्यार से थपथपाइए। आपका यह छोटा सा कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा उपहार है। प्रकृति के साथ आपकी दोस्ती हमेशा बनी रहे। सुरक्षित रहें, खुश रहें और अपने आसपास हरियाली फैलाते रहें। नन्हे दोस्तों, अब समय हो चला है प्रश्नों के उत्तर जानने का। हमारा प्रश्न था, उष्णकटिबंधीय जंगलों को दुनिया का फेफड़ा क्यों कहते हैं? तो इसका सही जवाब है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं और हवा को साफ रखते हैं। तो इसी के साथ हमारा कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। मिलते हैं अगले रविवार कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा

0: नन्हे मुन्ने बच्चे अपना कार्यक्रम सुन रहे थे बाल जगत। इस समय सवेरे के 9:30 हुए हैं।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: फसा। अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, आप प्रस्तुत है शास्त्र संगीत का कार्यक्रम, जिसके तहत आज आप सुनने जा रहे हैं पंडित भीमसेन जोशी का हिंदुस्तानी शैली में गायन। इनके साथ संगत करने वाले कलाकार हैं तबले पर भरत कामत, हारमोनियम पर सुधीर नायक व गायन में साथ दिया है श्रीनिवास जोशी ने। तो आइए सुनते हैं पंडित भीमसेन जोशी का गाया राग शुद्ध कल्याण में ख्याल। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है, जिसके बोल है एरी मैं पिया, और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल है मंदर बजुरे।

लबों पर मुस्कान, दिलों में प्यार लिए आए हैं, सुरों का खूबसूरत बहार लिए आए हैं, आपकी फरमाइशों को देंगे आवाज, फिर हाजिर हैं हम एक नई शुरुआत के साथ। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी श्री विजयपुरम के लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं श्री विद्या। हमसे जुड़ने और अपने पसंद के गीतों को सुनने हमें कॉल करें इन नंबरों पर 232-558 और 232-540। एसटीडी कोड है 03192। तो देर किस बात की, उठाइए फोन और जुड़ जाइए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं आज के पहले कॉलर से। हेलो,

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, हमारी बात किनसे हो रही है?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
0: राकेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के पहले कॉलर हैं आप, बताइए कौन सा
1: जी
0: गीत
1: जी
0: सुनवाएं आज आपको?
1: गीत भी सुनेंगे और आज मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि आज पहला कॉलर मैं बन गया कि मैं अब आपका प्रोग्राम भी सुनूंगा और आपके प्रोग्राम के साथ साथ मैं अन्य केंद्रों पे भी जोड़ूंगा क्योंकि आपकी पहला कॉलर क्या यह होता है कि अब ध्यान से जो है प्रोग्राम सुन सकते हैं।
0: जी बहुत अच्छा लगा, आपकी बहुत खुश हैं, आप पहले कॉलर हैं। तो बताइए गीत कौन सा है?
1: गीत है चाहत मूवी का और गाने के बोले दिल की तन्हाई को आवाज बना देते हैं।
0: जी सुनवाएंगे आपको आपकी पसंद का गीत। बताइए
1: और
0: कुछ अपने
1: आपकी
0: बारे
1: ज्यादा
0: में, आज रविवार है, क्या करने का
1: जी
0: सोचा है अपने लिए?
1: बस रविवार है तो आज सोचा है कि आज जो है अच्छा दिन बिताया जाए फैमिली के साथ। वैसे तो मेरे को तो छुट्टी छुट्टी होती है कि मैं तो घर पे रहता हूँ, तो सेब की बागवानी करते हैं। जो जो आज रविवार की छुट्टी का दिन का एंजॉय करे तो वो तो बहुत जो है क्या बोलते अपने फैमिली के साथ या कुछ लोग घूमने भी जा रहे होंगे।
0: जी बहुत ढेर सारे कामों के बाद छुट्टियों में थोड़ा एन्जॉय भी करना चाहिए, अच्छी बात होती है।
1: जी।
0: तो सुनवा रहे हैं राकेश जी आपकी पसंद का गीत।
1: अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ मित्रों को याद कर
0: जी
1: सकते फटाफट।
0: ज़रूर।
1: सबसे पहले तो आपको गाना डेडिकेट रहेगा, तो पूरन वर्मा है, अविनाश देवी है, भगवान सिंह परमार हैं, मांगी लाल चंदेल हैं और मोनिका जी हैं और दिल्ली से धर्मवीर जी हैं, सत्यन विष्णु कुंज हैं, स्कूल लाइन से हैं और पूर्णिमा जी है। तमाम सुनने वाले श्रोता सभी के लिए गाना डेडिकेट रहेगा। हमारे भस्माचार्य विमल जी है और तमाम सुनने वाले श्रोता सभी के लिए।
0: जी आप अपने सभी मित्रों के साथ सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी जी धन्यवाद।

तारों में चमक फूलों में रंगत ना रहेगी, अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

हाय हमें यूं देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए, ये मुमकिन है, इसी का कल

0: कोई पत्थर से ना मारी, ये वाला वीडियो।
1: जी सुनवाएंगे आपको आपकी पसंद का गीत। कुछ अपने बारे में बताइए,
0: मैडम
1: कब से
0: रिटायरमेंट
1: सुन रहे हैं
0: हुआ,
1: आप रेडियो?
0: रेडियो मैं 75 से सुन रहा हूँ मैडम। बहुत बदलाव आया है, गांव से निकल के मैं भी 40 साल का सफर नौकरी से किया, रिटायरमेंट भी,
1: जी
0: तो बहुत अच्छा लगता है। रेडियो हमारा जीवन साथी है।
1: जी अच्छा लगा आपसे बातें हुई। तो सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत, फिल्म है
0: बहुत
1: लैला
0: बहुत
1: मजनू।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, आइए बात करें हमारे अगले कॉलर से। हेलो, फरमाइश।
1: आदरणीय मैडम जी को प्यार भरा नमस्कार। मैं जबलपुर एमपी से अशोक सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी अशोक, अशोक जी आप एक बार फिर कहें।
1: जी
0: आपका नाम अशोक है?
1: जी
0: अशोक। अशोक जी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम। कैसी हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप कैसे हैं?
1: मौसम कैसा है?
0: यहाँ यहाँ का मौसम तो मिला जुला मौसम है। वैसे मौसम बारिश का है, अभी तो हवाएं चल रही हैं, बीच बीच में बारिश भी हो रही है। और आपके शहर का मौसम कैसा है?
1: इधर तो गर्मी है, अभी बारिश आने की उम्मीद है। बस मौसम मानसून आने की उम्मीद है।
0: जी तो अब आज बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं।
1: जी सुना दीजिए लता जी की आवाज में। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो हेलो फरमाइश,
0: जी,
1: गुड
0: हमारी
1: मॉर्निंग
0: बात किन से हो रही है? गुड मॉर्निंग
1: जी। मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ। मेरा गांव का नाम है राम कृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट है करीमगंज, आसाम से तालुका है
0: जी। अनूप जी,
1: ना।
0: कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कौन सा गीत सुनना
1: जी
0: चाहते
1: जी
0: हैं?
1: पहले दो लाइन हो जाए।
0: जी जरूर।
1: लम्हों की खुली किताब है जिंदगी, लम्हों की खुली किताब है जिंदगी, ख्यालों और सांसों का हिसाब है जिंदगी। कुछ जरूरतें पूरी, कुछ ख्वाहिशें अधूरी, इन्हीं सवालों के जवाब से जिंदगी है ना।
0: जी वाह,
1: और बहुत अच्छा लगता है जब आकाशवाणी से विजयपुरम में फोन लगता है।
0: जी बहुत खूब।
1: लेकिन
0: हमेशा की तरह ही
1: मतलब
0: आज भी आपने अपनी
1: जी
0: एंट्री
1: जी
0: शेर व शायरी के साथ की, बहुत अच्छा लगा। कैसे हैं आप अनूप
1: क्या
0: जी?
1: बात क्या बात, आप लोग इतने सारे सब अनाउंसर मेरे को इतना कॉम्प्लीमेंट देते हैं, बाकी दिल बात बात हो जाता है ना।
0: जी
1: लेकिन एक खेद है मेरा, इतने दिन हो गया, बहुत दिन हो गया कोई फोन आउट प्रोग्राम में मेरा कॉल नहीं आया। क्यों,
0: अच्छा,
1: क्या मैं क्या किया, मैं कोई गलती गलती किया ना किया, बोलिए।
0: नहीं ऐसी बात
1: ये
0: नहीं है अनुप जी, शायद आपका फोन नहीं लगा होगा, ऐसा कुछ हुआ
1: चार
0: होगा।
1: चार 5 महीना हो गया, लेकिन क्या करे, कोई बात नहीं। तो चलिए आज एक गाने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ। उनका नाम है कल आज और कल। भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से रखा है कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। ये गाने में डेडिकेट पहले है हमारे छोटे
0: जी
1: भाई फ्रेंड भी अविनाश तेली फ्रॉम धर्मनगर, चक्रवर्ती पुरुषोत्तम कुमार जी फ्रॉम कश्मीर, और अमर सिंह साहू जी और श्रीकांत जोशी जी फ्रॉम महाराष्ट्र, और
0: जी
1: हमारे टू सिस्टर्स से एक है सप्तमी कुंडू जी, शिप्रा जी, और मध्य प्रदेश से हमारे बबीता बागेल जी के लिए, और सतीश भाई के लिए, और ढेर सारे से तो अभी सुन रहे हैं इस मन भवन प्रोग्राम सबके लिए, और मतलब आपके लिए।
0: जी अनुप जी, सुनिए ये प्यारा सा गीत अपने सभी मित्रों के साथ।

0: हेलो फरमाई
1: जी, हमारी बात किन से हो रही है?
0: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी एमपी मध्य प्रदेश से बोला दीदी मनोज नामदेव।
1: मनोज जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज कौन सी गीत की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
0: जी जी बिल्कुल दीदी, आज सुनवा दो, मूवी का नाम रहेगा विजय पथ और उसमें गाना है राहों में उनसे मुलाकात हो गई।
1: जी, बहुत ही सुंदर गीत चुना है आपने। और बताइए, आज रविवार है, क्या करने का सोचा है आपने?
0: दीदी रविवार है अभी तो फिलहाल में करने का सोचा, और क्योंकि छुट्टी जिंदगी में उनको टाइम नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी टाइम मिलता है दीदी, तो बस मेरा तो सबसे फर्स्ट एक ही शौक रहता है कि आपका रेडियो सुनना और अपना काम करना।
1: जी, वैसे काम क्या करते हैं आप?
0: जी जी बिल्कुल बताना चाहते हैं, शॉप है दीदी मेरी कपड़े वाली।

0: आई मशीन चला रहे हैं दीदी, वो चलाते हैं।
1: तो आपका काम कैसे चल रहा है अभी? अभी
0: काम दीदी बढ़िया चल रहा है फिलहाल में, आपका आशीर्वाद है भगवान की कृपा से बढ़िया चल रहा है।
1: तो सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का गीत विजयपथ मूवी से, क्या किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं आप?
0: बिल्कुल बिल्कुल दीदी, डेडिकेट करना चाहते हैं, लेकिन जिस भाइयों को डेडिकेट करेंगे सब लोग गीत सुन रहे हैं और वो भी फोन लगाएंगे तो सबके लिए गाना डेडिकेट रहेगा
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनवा रहे हैं विजयपथ मूवी का ये गीत
0: जी। धन्यवाद दीदी आपको।

0: श्रोताओं, इस समय आप आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुए हैं सुबह के 10:38। और अब कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: জীবন এখন বড্ড ফাস্ট, তাই বাড়ি বসে হ্যাসল ফ্রি ব্যাংকিং এর জন্য সুইচ করুন SBI প্রিমিয়ার ব্যাংকিং এ,
2: যেখানে আপনি পাবেন ডেডিকেটেড ভার্চুয়াল রিলেশনশিপ অ্যাসোসিয়েট, যিনি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনাকে স্মার্ট অ্যাডভাইস দেবেন এবং সমস্ত কাজ কমপ্লিট করুন লাইটনিং স্পিডে, অর্থাৎ সিমলেস ব্যাংকিং এক্সপেরিয়েন্স এন্ড মেনি আদার এক্সাইটিং বেনিফিটস।
1: আজই পৌঁছে যান নিজের নিকটবর্তী SBI ব্রাঞ্চে এবং অ্যাক্টিভেট করুন SBI প্রিমিয়ার ব্যাংকিং। টার্মস এন্ড কন্ডিশনস অ্যাপ্লাই।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग।

0: एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: हेलो फरमाइश।
2: जय माता दी।
1: जय माता दी जी, हमारी बात किनसे हो रही है? हेलो हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? श्रोताओं, लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट चुका है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

हो ये नारियां, शहर की नारियां।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश,
0: जी, हमारी बात किनसे हो रही है?
1: मैं प्रेमजीत चक्रवर्ती बोल रहा हूँ, आसाम त्रिभुवन डिस्ट्रिक्ट से। पहले आपको नमस्कार, और अभी प्रोग्राम से मेरा सारे श्रोताओं को मेरे तरफ से प्यार
0: नमस्कार।
1: भरा
0: कार्यक्रम में
1: नमस्कार।
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेमजीत जी।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
0: जी तो
1: आज तो
0: कैसे
1: लाइन
0: हैं आप?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार डायल किया हो तो लाइन लग गया, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: पहली कोशिश में ही लग गया आपका कॉल।
1: और
0: तो आप आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आज तो मैं गाना सुनना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है आंधी। गाने का बोल रहे थे, तेरे बिना जिंदगी, किशोर
0: जी
1: कुमार और लता जी का आवाज है।
0: जी
1: इस गाने को
0: बहुत ही
1: सुनते समय
0: खूबसूरत
1: आप
0: गीत चुना है आपने
1: राहुल देव बर्मन जी,
0: जी।
1: साल का राहुल देव बर्मन जी को जन्मतिथि दिया था, इसलिए आज इस गाने सुनने को राहुल देव जी को मैं श्रद्धांजलि दिया देता हूँ।
0: जी, जानकारियों
1: और
0: का
1: मैं
0: खजाना है
1: दूसरा
0: आपके
1: चित्रों का
0: पास।
1: नाम लेना चाहता हूँ
0: जी
1: मैडम।
0: जरूर,
1: पहले
0: जल्दी से ले लीजिए।
1: तो आप सुनिए, अनुप कुमार भट्टाचार्य जी और आशा कुल दंगा जी, जहर जी और अभिनय जी जी, और दिल्ली से बहुत अच्छा एक श्रोता है, उनका नाम है धर्मवीर प्रजापति जी, और आसाम से भाईचंद मुंडा जी और रमेश पात्र जी, और अभी प्रोग्राम से मेरा सारे श्रोताओं को लेकर सुनेंगे। ठीक है मैडम, आप अच्छा
0: जी
1: रहे, आपका
0: बहुत बहुत
1: नमस्कार,
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद,
0: कॉल
1: थैंक
0: करने के
1: यू।
0: लिए। सुनिए
1: ओके
0: आपकी
1: बाय बाय।
0: पसंद का ये गीत।

महफिल सजी थी, अब विदा लेने का समय आया है। आपके प्यार ने हर पल को खास बनाया है। जिन श्रोताओं से आज बात नहीं हो पाई, उनसे अनुरोध है कि अगली बार फिर कोशिश करें। अगले रविवार फिर मिलेंगे नई फरमाइशों और नए गीतों के साथ। और अब दीजिए अपनी दोस्त श्री विद्या को इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 MHz पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सुबह की 10:55 होने वाले हैं। अब लीजिए सुनिए हमारा अति विशिष्ट कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए

0: प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किड बैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
5: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
3: चले
4: ले आ गया नया किड बैग।
6: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
7: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है। और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी, और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के

अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं, और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है, और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम यानि केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल

से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11 लाख परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है, हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी

तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है, और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनकी रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद, संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ, तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई

टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है।

पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको वृक्ष में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको वृक्ष का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की

0: मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह मिलित्वा अहमत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि। 26,000 वर्षस्य अर्धवर्षम् प्रायः समाप्तमेव। एतेषु षण्मासेषु वयं मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिनां नैकासाम् उपलब्धीनां चर्चां कृतवन्तः। जून मासेपि देशेन एतादृश्यः उपलब्धयः प्राप्ताः याः प्रत्येकं देशवासिनं गर्वेण पूरयन्ति। एताः सफलताः देशस्य सुरक्षया आत्मनिर्भरतया च सह सम्बद्धाः सन्ति। अचिरादेव अहं कोलकातायां नौसेना सम्बद्धे एकस्मिन् कार्यक्रमे सहभागस्य अवसरं प्राप्तवान्। तत्र INS दूनागिरि, INS संशोधक, INS अग्रय इत्येते पोताः भारतीय नौसेनायाः रक्षक दले सम्मिलिताः। एतेषां पोतानां संरचना निर्माणं चापि सर्वं स्वदेशीयमस्ति। सखायः जून मासे एव विमाननक्षेत्रे अपि देशेन एका महती सफलता अर्जिता। C-295 इति विमानं भारते निर्मितमस्ति, अपि च C-295 इत्येतत् विमानं सर्वप्रथमोड्डयनं पूर्णं कृतवत्। एतादृशानि 40 संख्याकानि विमानानि भारते एव निर्मीयन्ते। अनेन MSME इत्येतेभ्यः उद्यमेभ्यः विमानक्षेत्राय च नूतन शक्तिः प्राप्यते, वृत्तेः अवसराः वर्धन्ते।

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: men's World Cup record to 19 goals. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुनो, इस समय दोपहर की 1:11 रहे हैं और ये जिस कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं गुलाम अली और जगजीत सिंह। श्रोताओं, कार्यक्रम में पहले लीजिए सुनिए गुलाम अली की आवाज़ में एक गज़ल।

सुगम संगीत के कार्यक्रम के तहत आज के फनकार थे गुलाम अली और जगजीत सिंह। और इसी के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 MHz पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए कार्यक्रम घर संसार।

नमस्कार प्यारी बहनों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम घर संसार में। और आपके साथ हूँ मैं, यानी कि आपकी सखी, आपकी दोस्त रीमा अरोड़ा। बहनों, चलिए आपको आज का सुविचार बताती हूँ, जो कहता है कि जैसे एक छोटा सा पौधा चट्टानों को चीर कर बाहर निकल आता है, वैसे ही हौसला हो तो हर मुश्किल परिस्थितियों को पार किया जा सकता है। जी हाँ बहनों, जीवन की राहों में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब सब ओर रास्ता बंद दिखाई देता है, और तब उम्मीद की छोटी सी किरण, जो हमारे विश्वास, हमारी हिम्मत से आती है, चट्टान जैसी परेशानी को चीरने की हिम्मत रखती है। तो बस उस उम्मीद के दिए को सदा जलाए रखें और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहें।

बहनों, चलिए आज वन महोत्सव के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे देश में मनाया जाने वाला एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है, जो जुलाई माह के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। यह उत्सव है उनके अस्तित्व को सलाम करने का, जिनके बिना हम इंसान कुछ भी नहीं है। फल, फूल, ऑक्सीजन, छांव के साथ साथ जलवायु को नियंत्रित करने, मिट्टी के कटाव को रोकने का काम भी करते हैं ये वन। वन्य जीवों का आवास होते हैं ये वन। कई तरह की वनस्पतियों का भंडार है इन जंगलों में, और सूख जाने के बाद ईंधन भी बन जाते हैं हमारे लिए ये वन। पर्यावरण संरक्षण में इनकी अहम भूमिका है, क्योंकि यह हमारे पृथ्वी के प्राकृतिक फेफड़े हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड सोख कर हमें ऑक्सीजन देते हैं, धरती के तापमान को नियंत्रण में रखते हैं और बारिश के चक्र को बनाए रखते हैं। पेड़ों की जड़ें जमीन में पानी को सोखने में मदद करती है, जिससे भूजल स्तर यानी कि ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ता है। पेड़ों की यही जड़ें मिट्टी को भी कस कर रखती हैं, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा ये वन दुनिया के लगभग 80% स्थलीय जीव जंतु और पौधों का संस्करण कर कर इन जातियों को विलुप्त होने से बचाते हैं। और प्रदूषण तो हमें पता ही है कितना खतरनाक रूप ले रहा है, और अगर वन ना बचाए गए तो ये कई प्रजातियों को खत्म कर सकता है। विश्व भर में इन जंगलों को बचाने के लिए कई प्रयास चल रहे हैं। इस दिवस की शुरुआत साल 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री डॉक्टर के एम मुंशी ने लोगों में पर्यावरण संरक्षण, हरियाली बढ़ाने और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के प्रति जागरूकता जगाने के लिए की थी, और वो एक पहल आज महोत्सव के रूप में बदल गई है। आइए हम भी इस महोत्सव का हिस्सा बने और ये प्रण लें कि हम भी पेड़ लगाएंगे, इन जंगलों को कटने से बचाएंगे, क्योंकि अगर ये जंगल नहीं बचे तो एक समय आएगा जब हम भी नहीं बचेंगे, कोई जीव जंतु नहीं बचेगा। इसलिए आज समय रहते उनको बचाना हमारा कर्तव्य है। तो चलिए अपने कर्तव्य को निभाएं और इन पेड़ पौधों को बचाएं।

जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा।

बहनों, चलिए इस प्यारे से गीत के बाद अब आपको आज हम ले चलते हैं नाटकीय दुनिया में और सुनवाते हैं एक झलकी झलकी जिसका नाम है वाह रे भाग्यवान, और इसे लिखा है जाकिर हुसैन जी ने। तो चलिए मिलकर इस हास्य झलकी का आनंद लेते हैं।

0: अरे ओ भगवान, मेरी टाई किधर है?
1: आ रही हूं। ये क्या, टेबल पर ही तो रखी है। तुम्हें तो कुछ दिखाई दे तब ना, जब देखो छोटे बच्चों की तरह चिल्लाते रहते हो, एक मिनट भी चैन लेने नहीं देते। पता नहीं दफ्तर में कैसे काम करते हैं।
0: अरे भगवान, दफ्तर में मैं ता काम थोड़ा ही करता हूँ। अरे वो मेरी स्टेनो है ना, स्टेनो सारा काम तो वही कर देती है। मैं तो बस दस्तखत करता हूँ, दस्तखत। क्यों, क्या समझी?
1: बस बस, रहने भी दो। ये लो अपनी अटैची और जाइए दफ्तर, नहीं तो देर हो जाएगी। और हाँ, मैंने टिफिन भी डाल दिया है, दिन में खा लेना।
0: अच्छा तो भगवान, मैं चलता हूँ।
1: और सुनिए, शाम को जरा जल्दी आइएगा।

0: नमस्ते बहन जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
1: आप
0: शायद आपने पहचाना नहीं, मैं आपके बाजू वाली फ्लैट में ही रहती हूँ। हाँ, आप पहचानेंगे भी कैसे, घर के अंदर जो रहती हैं आप।
1: अरे आइए ना, अंदर आइए, बैठिए। कहिए क्या लेंगी आप, ठंडा या?
0: अरे आप तकल्लुफ मत कीजिए, मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ। ये दिन का तो अकेलापन जैसे काटने को दौड़ता है, क्यों, है ना?
1: हाँ ये तो आपने ठीक कहा।
0: वैसे तो मेरे दो बच्चे हैं, लेकिन वे तो स्कूल चले जाते हैं ना, इसलिए दिन को जरा शांति बनी रहती है। लेकिन जब बच्चे घर में होते हैं, उफ, तब तो पूछिए मत। कभी ग्लास टूट रहा है तो कहीं बोतल, और कहीं कोई कीमती से कीमती सामान। ओहो, मैं तो बाज आई इन बच्चों से। पर बहन जी, आपके बच्चे?
1: जी नहीं, वैसे तो हमारी शादी को 3 वर्ष हो गए, पर अब तक हमने बच्चों के बारे में सोचा ही नहीं।
0: हाँ, ये आपने ठीक ही सोचा है, इन बच्चों के झंझट में पड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन बहन जी, कम से कम एक बच्चा तो घर में होना ही चाहिए, उसके साथ कम से कम समय तो गुजर ही जाएगा, क्यों, है ना?
1: हाँ वो तो है।
0: बहन जी, सवेरे आपने भाई साहब को विदा करते हुए कहा था ना, शाम को जल्दी आइएगा। क्या भाई साहब देर से लौटते हैं?
1: हाँ भाई, उनके दफ्तर में काम कुछ ज्यादा ही रहता है, इसीलिए आने में देर हो जाती है। कभी 7, कभी 8, या कभी कभी तो 9 भी बज जाते हैं।
0: पर बहन जी, इस देर से आने को आप मजाक में मत लीजिए। आपको पता है, हमारे उस बाजू वाले फ्लैट में कुछ महीनों पहले पति पत्नी रहते थे। उसका पति भी रात देर से लौटता था। कुछ महीनों के बाद पता चला कि उसने दूसरी शादी कर ली है। खैर, ये तो दूर की बात है, अब आप इसी फ्लैट की बात ले लीजिए। आप लोगों के आने से पहले यहाँ एक दंपति रहता था, उस बेचारी का पति भी रात देर से घर लौटता था। कुछ दिनों के बाद उसके पति ने तलाक नामा लाकर उसके सामने रख दिया और बोला, इस पर दस्तखत करो। जब उसकी पत्नी ने कारण पूछा तो कहने लगा, मुझे दूसरी लड़की पसंद आ गई है। ये भी कोई बात हुई भला? इन मर्दों का क्या पता बहन जी, ये तो बिन पैंदे के लोटे होते हैं, जिस ओर चाहे लुढ़क गए। सही पूछो तो इनको घर की मुर्गी दाल बराबर लगे हैं। मैं तो कहती हूँ बहन जी, आप चुप मत बैठिए, पता लगाइए। वैसे हमारे फ्लैट के पीछे बहुत से मजदूर रहते हैं, उनमें से कोई तो भाई साहब के मिल में काम करता ही होगा। अगर आप कहें तो मैं किसी से पता लगाऊं।
1: अब मैं क्या कह सकती हूं?
0: हाँ बहन जी, अब आप कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कहूंगी तो मैं कल आकर। अच्छा तो बहन जी, मैं चलती हूँ, बहुत सारा काम पड़ा है। वैसे बच्चों का स्कूल से आने का वक्त भी हो चुका है।

0: अभी आई।
1: अरे बहन जी, आइए ना, अंदर आइए, बैठिए।
2: हाँ तो बहन जी, मैं कहती थी ना कि पतियों को इतनी आजादी देना ठीक नहीं। अब
1: क्यों, क्या हुआ?
2: तक तो कुछ नहीं, पर बहुत जल्दी कुछ होने वाला है।
1: मैं समझी नहीं।
2: नहीं समझी तो जरा ध्यान से सुनो। कल यहाँ से जाने के बाद मैंने गोपी से कहा कि भाई साहब के बारे में पता लगाओ।
1: ये गोपी कौन?
2: अरे अपने फ्लैट के पीछे रहने वाले मजदूरों में से एक है, जो भाई साहब के यहाँ मिल में काम करता है। मेरी तो बहुत सुनता है। वो कल शाम को मिल से लौटकर बता रहा था कि भाई साहब और उनकी स्टेनो एक साथ एक ही टेबल पर लंच करते हैं, साथ साथ शहर को जाते हैं और दोनों दोनों हरदम हंसते ही रहते हैं। और वो स्टेनो मेम साहब हमेशा भाई साहब के चैम्बर में ही रहती है। राम राम राम राम, आपके होते हुए दूसरी से सचमुच कलयुग आ गया है, कलयुग। अच्छा तो बहन जी, मैं तो चली, यही खबर देने आई थी।

0: क्या बात है भगवान, कल रात से गुमसुम हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे तुम तो नाश्ता भी नहीं कर रही हो, आखिर बात क्या है?
1: सुनो जी, एक बात पूछूं तो आप सही सही जवाब देंगे?
0: अरे भगवान, कभी ऐसा हुआ है भला कि तुमने कुछ पूछा हो और मैंने सही कहा हो? मेरा मतलब है गलत कहा हो। ठीक है चलो पूछो, जरा हम भी तो जाने आखिर बात क्या है।
1: ये आपकी स्टेनो देखने में कैसी है?
0: आहा, पूछो मत भगवान, देखने में तो जैसे जन्नत की हूर है वह। चांद भी देख लेना तो वह भी शर्मा जाए। आह, जब बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे मोती झड़ रहे हो, और जब हंसती है तो मानो फूल बरस रहे हो। कुछ मत पूछो भगवान, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम ही है।
1: हाँ, करते रहो तारीफ उसकी, जन्नत की हूर है। हम तो अब कुछ भी नहीं है ना, कभी मेरी भी इतनी तारीफ की है? रात रात को देर से आते हो और कहते हो बहुत काम है, ये क्यों नहीं कहते कि उस चुड़ैल के साथ बैठकर?
0: अरे छी छी छी छी छी छी छी, अरे भगवान क्यों गलत समझ रही हो, वो बेचारी ऐसी थोड़ी ही है। तुम भी उससे मिलोगी ना तो तारीफ करने लगोगी। हाँ, अरे अरे पर तुम जा कहाँ रही हो? अरे सुनो तो भगवान, जरा सुनो तो।
1: अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी, मैं मायके जा रही हूं। अब तो उसी चुड़ैल के पास रहना, कभी मेरी भी इतनी तारीफ की है, चांद भी देख ले तो शर्मा जाए।
0: अरे सुनो तो भगवान, अरे जरा सुनो तो, मुझे इस हालत में छोड़कर क्यों जा रही हो तुम? अरे सुनो। ओह चली गई, इसे अब मैं कैसे समझाऊं? किसी ने सच ही कहा है, कभी किसी नारी के सामने दूसरी की तारीफ नहीं करनी चाहिए, और खास करके धर्मपत्नी के सामने तो हरगिज नहीं।

0: अरे बहन जी, इतने दिनों के बाद कहाँ से आ रही हो?
1: मायके गई थी। सोचा था कि ये लेने आएंगे, लेकिन 3 दिन हो गए, ये आए ही नहीं।
0: भाई साहब आएंगे भी कैसे, वो तो आपके जाने के दूसरे दिन से ही बीमार पड़े हैं। बहन जी मुझे माफ कर दीजिए और भाई साहब से कहिएगा कि वो भी मुझे माफ कर दे।
1: लेकिन किस बात के लिए?
0: वो अपना गोपी है ना, वही गोपी, वो बता रहा था कि भाई साहब और उनके स्टैनो भाई बहन जैसे रहते हैं, और वो तो भाई साहब को भैया जी भी कहती है, और भाई साहब भी उसे अपनी बहन जैसा प्यार करते हैं। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है भाई साहब के पास जाने की। अब बहन जी आप देर मत करिए, जल्दी से ऊपर जाइए, भाई साहब बहुत बीमार हैं।
1: हाय, ये मैंने क्या किया? अब तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे।
2: हाय हाय, कौन है भाई? आ जाओ अंदर, दरवाजा खुला है।
1: ये आपने क्या हाल बना लिया है जी? हाय राम, आपको तो तेज बुखार है, ये आपके हाथ में क्या हुआ?
2: अरे भगवान, तुम्हारे जाने के बाद पहली बार रोटी बनाया, रोटी तो कच्ची रह गई पर हाथ जल गया।
1: प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना, मैंने आपको बहुत गलत समझा। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि वो स्टेनो आपकी बहन जैसी है?
2: अरे अरे भगवान, कहने की तो बहुत कोशिश किया था मैंने, पर तुमने मौका ही कब दिया। हाय
1: आपने मुझे माफ कर दिया ना?
2: अरे, माफ नहीं करके क्या आफत लेनी है मुझे? यहाँ तो वैसे ही हाथ जला हुआ है।
1: अच्छा, अब मैं जाकर रसोई संभालती हूँ, हाँ, और आप तो बस लेटे ही रहिए। हाँ
2: वाह रे भगवान, यहाँ हाथ और दिल सब जला कर रख दिया और कहती है माफ कर दो। लेकिन भगवान, माफ तो करना ही है, और क्यों ना करूं भला, ये हाथ और थोड़े ही जलवानी है मुझे। वैसे भी माफ करने के लिए टैक्स थोड़े ही लगती है कोई। वाह रे भगवान वाह, हाय।

बहनों, हमें आशा है कि ये हास्य झलकी, वाह रे भाग्यवान, आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए यहाँ छोटा सा अंतराल लेते हैं और सुनते हैं एक छोटा सा प्यारा सा गीत।

0: तो बहनों, इसी गीत के साथ हमारा आज का घर संसार का ये अंक यही समाप्त होता है। तो अब आप अपनी सखी, अपनी दोस्त रीमा अरोड़ा को इस अंक से दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अब हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies. With focus on indigenous defence production, highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft manufactured in the country. In his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeal to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation-level talks in Victoria. Government asks Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in their final Group A match in London today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India.
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई है। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: Mr. Modi exuded pride that India has achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dhunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. Mr. Modi noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies.
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: Mr. Modi also cited the example of the Petkar family in Nandher, Maharashtra, who arranged accident insurance for approximately 3,500 villagers. Each individual was provided with an insurance cover of 1 lakh rupees. The Prime Minister shared that the government is extending this protective shield to crores of families across the country.
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा

0: बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: In this episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also touched upon the subject of superstition. He noted that superstition has been deeply ingrained in human society for millennia. Mr. Modi shared how the rare Hargela bird found in Assam was considered inauspicious in certain parts of the state. The Prime Minister stated that it was during that time that biologist Purnima Devi Barman resolved to change the misconceptions deeply rooted in people's minds.
0: हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
1: Touching upon the topic of sports, Prime Minister Modi expressed happiness that the number of young people in the country who are both playing sports is rapidly growing. In today's Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also spoke about preserving people's creativity in the age of technology and AI. He said Nalanda University has found a solution to this and is now shaping India's destiny in a new avatar.
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: Mr. Modi highlighted other significant efforts are underway to prepare the youth for new technology while keeping them rooted in their heritage. The Central Sanskrit University in Delhi is launching a B.Tech program in artificial intelligence and data science. Prime Minister Modi expressed happiness that Indian culture is reaching various corners of the globe today. He spoke of an initiative in the Dominican Republic, which has an Indian population of around 100.
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: The Prime Minister mentioned Meghalaya's root bridges, saying these root bridges take decades to take shape. He shared that India has now applied to have Meghalaya's root bridges included in the UNESCO World Heritage Site Network. On the subject of cleanliness, Mr. Modi gave the example of some women from Byavara in Rajgarh district of Madhya Pradesh. The women resolved to remove plastic waste scattered around the area. Mr. Modi also urged people to ensure that the idol of Ganpati Bappa for Ganesh Utsav is made from the soil of this country and crafted by the hands of local potters and artisans. He also urged those who make Ganesh idols to prioritize clay idols. Concluding his address, the Prime Minister stressed on water conservation, saying that every single drop of rainwater must be saved. He said the momentum of Catch the Rain campaign should not slacken. In some more news, Prime Minister Narendra Modi and President of Seychelles, Patrick Hermione, held bilateral talks at Victoria this afternoon. Both leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. Earlier, he was given a guard of honor at the State House, with President Hermione also present. Several agreements were exchanged in a range of fields, including agriculture, finance, space, and health. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan today highlighted the central role of villages in realizing the vision of Viksit Bharat 2047. Addressing the Rashtriya Grameen Vikas Sammelan in New Delhi, Mr. Chauhan said a provision of over 1,51,000 crore rupees, including the

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि यह भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रूपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रूपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रूपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक

0: प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है, ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ, हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ कर के रहे।
1: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
0: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
0: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
1: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशेल्स के राष्ट्र

0: राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्वकप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। दो मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़।

पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम के बारे में बताया जाता है कि तेज हवा के चलने के कारण वायु की गति लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 1 जुलाई तक समुद्र में ना जाएं। कल शाम तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की सी मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। श्रोताओं, इस समय 2:33 होने वाले हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 MHz FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती
1: FM 3 विजयपुरम
2: 100.9 आपका हम सफर।
3: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत लहरी।
4: सर्द चिलमन के पीछे शमा महफूज रहती है।
3: कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म 30 मार खां से। आवाजें हैं शेखर रवजिनी कमाल खान और रजा हसन की।

श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कुमार की लिखी गीत रचना, जिसे संगीत से सजाया प्रीतम ने। फिल्म है दिल तो बच्चा है जी, और आवाज है सोनू निगम की।

श्रोताओं, ये है टर्निंग 30 फिल्म का एक गीत, आवाज है हमजा फारूकी की। सिद्धार्थ सुहास के लिखे इस गीत को संगीत से इस गीत को लिखा राम गौतम ने।

श्रोताओं आप लीजिए सुनिए फिल्म पे बैक का एक गीत। गायक कलाकार गीतकार व संगीतकार हैं देव सिकदर।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ अब गीत लहरी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है, अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान। शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: विविध भारती
5: FM 3 विजयपुरम
6: 100.9 आपका हम सफर।
0: श्रोताओं, हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय दोपहर के 3 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम एल्बम टाइम। पहला गीत शान की आवाज में।

0: अगली आवाज है कविता कृष्णमूर्ति की।
1: ऐसा क्यों होता है कि रोशनी अपने साथ साये लाती है, मुस्कुराहटों के पीछे आंसू होते हैं, खुशियां आती हैं लेकिन उनके दामन में कोई गम जरूर होता है। मोहब्बत जो जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है।

0: विविध भारती
1: FM 3 विजयपुरम
2: 100.9 आपका हम सफर।
3: श्रोताओं, हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय 3:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम। यूं ही गाते रहो।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी दोस्त श्री विद्या। दोस्तों, बारिश के मौसम में कुछ यादों का सिलसिला होता है। कभी भीगी हुई गलियां, कभी कागज़ की नाव, तो कभी किसी अपने के साथ बिताए गए अनमोल पल। इन्हीं मीठी यादों और सुरीले नगमों के साथ अगले आधे घंटे हम आपके साथ रहेंगे।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे है। अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो श्रोताओं, सभा की शुरुआत में सबसे पहले सुनते हैं निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनला मेन ये रोकरे हमांग इंगे रेता का लमक तेलगम मीडियम वेव तो 438.6 मीटर हेक 634 किलोहर्ट्स रमांगेलगी आकाशवाणी श्री विजयपुरमनगी निकोबारी प्रोग्राम तहांगा।

श्रोताओं, अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 20वीं कड़ी।

Hello, dear friends. Welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Today, I am talking about workplace conflict management. कार्यस्थल में संघर्ष के नकारात्मक पहलुओं को सीमित करने और संघर्ष के सकारात्मक पहलुओं को बढ़ाने की प्रक्रिया है। संघर्ष प्रबंधन का उद्देश्य संगठनात्मक सेटिंग में प्रभावशीलता या प्रदर्शन सहित सीखने और समूह परिणामों को बढ़ाना है। उचित रूप से प्रबंधित संघर्ष समूह परिणामों को बेहतर बना सकता है। अधिकांश पदों पर मजबूत संघर्ष प्रबंधन कौशल एक फायदा है, क्योंकि संघर्ष समाधान से बचना लगभग असंभव है। असहमत होना और असहमत होने पर असहमत होना वास्तव में स्वस्थ है। पूरी तरह से संघर्ष को समाप्त करने से अपनी खुद की समस्या पैदा होंगी। हमारे पास विभिन्न प्रकार की राय नहीं होगी और त्रुटिपूर्ण योजनाएं और नीतियों को पकड़ने और सुधारने का कोई तरीका नहीं होगा। लेकिन मिसकम्युनिकेशन या पारस्परिक तनाव आसानी से आक्रोश या इससे भी बदतर हो सकता है। संघर्ष के हल करने और बढ़ाने की अनुमति देने वाले संकल्प अंततः उत्पादकता और नुकसान को कम करेंगे और कर्मचारियों के मनोबल को नुकसान पहुंचाएंगे। यही कारण है कि नियोक्ता संघर्ष के प्रबंधन और प्रसार के लिए कर्मचारियों की तलाश करता है। संघर्ष भी संस्था की एक स्वाभाविक समस्या है, क्योंकि जहां बहुत से विचारशील लोग काम करते हैं, वहां मूल्य भावनाएं, आशाएं और उनके स्वयं के हितों के टकराव की संभावना होती है। फिर भी एक सुचारू प्रणाली के लिए आवश्यक है कि इस तरह के संघर्ष को कम करने, नकारात्मक प्रभाव से बचाने के उपाय करने और कुछ नियोजित नीति अपनाने के लिए प्रयास किए जाए। संघर्ष एक मतभेद है। उदाहरण के लिए, अक्सर श्रमिक उच्च मजदूरी की मांग करते हैं और प्रबंधन उनकी मांगों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। फिर श्रमिक और

मालिक के बीच संघर्ष होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हड़ताल हो सकती है। या स्वाभाविक है कि तनाव और टकराव की ये स्थिति बिना किसी देरी के इस समाप्त करने के प्रयास के प्रति आशान्वित है, ताकि व्यवसाय बढ़ता रहे। एक अन्य विचारक के अनुसार संघर्ष दो पक्षों के बीच विवाद, असहमति या संघर्ष है। ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लक्ष्य पक्ष के बीच एक जानबूझकर हस्तक्षेप है। इस प्रकार संघर्ष समन्वय के लिए एक बाधा है, एक विनाशकारी अप्रियता है। जैसे कि हमने स्थापित किया है कि पेशेवर का उद्देश्य संघर्ष से बचने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे प्रभावी ढंग से हल करना चाहिए। संघर्ष के कई कारण हैं, या किसी भी परिस्थितियों में हो सकती है। ये अक्सर आकस्मिक या अचानक होते हैं। ये व्यक्ति, विभाग या समाज के स्तर पर भी संभव है। इसीलिए विवाद या मतभेद स्वाभाविक है जहाँ कई लोग कार्यरत है। बिना किसी देरी के इस तरह के संकट को संभालना और संघर्ष के दूरगामी प्रभाव से संस्था को मुक्त रखना प्रबंधन की चुनौती है। दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। I repeat, feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla। spice.lamhe.vanilla। संघर्ष के कारण कुछ ऐसे हैं: विशेषज्ञता द्वारा विशेषज्ञों का बढ़ता महत्व, आपसी सहयोग का अभाव, दूसरे के उत्पादन को कम करने के लिए एक वर्ग की अक्षमता, उपकरण की निर्धारित उद्देश्य और उपलब्धि के बीच अंतर, अधिकारों का अनुचित प्रदर्शन, उच्च अधिकारियों की योग्यता का विनाश, सही नेतृत्व गुणों की कमी, व्यक्तिगत कड़वाहट, रिश्तों का टूटना, कमजोर संचार प्रणाली, मूल्य और मूल्य का भिन्नता, संगठन में उपेक्षा, सुविधाओं की अनुपस्थिति, प्रबंधन का अमित्र व्यवहार, संस्था की एक श्रमिक विरोधी नीति, अधिकारों और कर्तव्यों की अस्पष्टता, निर्दिष्ट अधिकारों की सीमा, अतिक्रमण, धार्मिक, क्षेत्रीय या जातीय भावनाएं, अधिकतम लाभ का एक दृष्टिकोण, ग्राहकों या श्रमिकों का शोषण, अनुचित मांगों का पूरा करने के लिए दबाव का तरीका, पर्याप्त जानकारी प्रवाह में बाधाएं, पद प्रतिष्ठा टकराव। स्पष्ट रूप से सहानुभूतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक संवाद करने की अनुकूल परिणाम पैदा होते हैं और पेशेवर रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। स्पष्ट, सटीक, लिखित और मौखिक संचार के साथ कई अनावश्यक संघर्षों से बचा जा सकता है। दूसरों के बारे में नाराजगी जताते हुए कि वे पहले से ही जानते हैं, सोचते हैं या इरादा करते हैं, गुस्सा या बुरा हो सकता है। बहुत से लोग शुद्ध रूप से बहस करते हैं, क्योंकि वे सुनना चाहते हैं। बस एक अच्छा श्रोता होना आत्मविश्वास को प्रेरित करने और अहद भावनाओं को हल करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। अच्छे संचार कौशल को उदाहरण में शामिल है। समस्याओं का त्वरित निराकरण, औपचारिकता पूरी करना, सक्रिय होकर सुनना, नेतृत्व, मध्यस्थता, पार्टियों के साथ बैठक, सही संचार, मोल भाव, अनकहा संचार, संवाद खोले, सकारात्मक व्यवहार सीखना, लिखित संचार, भावनात्मक बुद्धि। भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसी की अपनी भावनाओं और दूसरों के भावनाओं को समझना और उन भावनाओं को अच्छी तरह से संभालने की क्षमता है। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग दूसरों की जरूरतों की पहचान करने और उनसे मिलने, उनकी जरूरतों और भावनाओं की जिम्मेदारी लेने में अच्छे होते हैं। ऐसा करने के कुछ तरीके ऐसे हैं मेरे दोस्तों: दोस्ताना होना, विश्लेषणात्मक होना, भावनाओं को व्यक्त करना, समझौता, जिज्ञासा दिखा रहा है, माफ कर देना, दूसरों की सहायता करना, ट्रिगर का पता लगाना, सुधारों को पहचानना, जमीनी नियम निर्धारित करें, सम्मान दिखा रहे, व्यवहार को संशोधित करें, आशावादी बने, स्वयं जागरूक होने, आत्मनियमन प्रदर्शित करें। दिस इज ऑल अबाउट वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज प्रोग्राम ऑफ लम्हे। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। बाय दोस्तों।

आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla। spice.lamhe.vanilla। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:40 हुए हैं। अब सुनते हैं आज व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले आज के शेष कार्यक्रम।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम होगा। बंगला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30। शाम 6 बजे आप सुन सकते हैं व्हाट्सएप पर आधारित महिलाओं की फरमाइश पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संगीत संगिनी। 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम धरती के गीत, जिसमें आज पेश किए जाएंगे हिमाचली लोकगीत। देशगान का समय रहेगा 6:45। 7:05 पर आप प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सुन सकते हैं। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जनसूचनाओं से अवगत कराया जाएगा शाम 7:15 पर। आज शाम 7:20 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया के तहत फिल्मी गीत। युवा दोस्तों के कार्यक्रम युवाणी का समय रहेगा 7:30। रात 8 बजे आप आनंद ले सकते हैं फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। 8:30 पर रोजगार समाचार और चंद देशभक्ति गीत पेश किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के अलावा 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9 बजे News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम रेडियोस्कोप और रात 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप पंडित सुधीर पांडे का तबला वादन और विद्वान NS कल्याण का राग मृदगम सुन सकते हैं, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत भी आप सुन सकते हैं, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। रात 11 बजे मौसम की जानकारी के बाद हमारी स्थानीय सभा की समाप्ति होगी। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब सुनते हैं कल प्रसारित होने वाली कार्यक्रम। हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। 5:55 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम एग्री टिप्स, जिसमें कल जानकारी का विषय रहेगा अस्वस्थ पशुओं की पहचान। 6:10 पर जलयानों का यात्रा कार्यक्रम,

6:15 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम इंद्रधनुष, जो केंद्रित होगा तस्वीर शीर्षक पर। रामचरितमानस गान की 284वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी 6:30 पर। 6:40 पर समाचार वार्ता, 6:45 पर वतन के गीत। मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 6:50 पर। 7:05 पर आप प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सुन सकते हैं। 7:15 पर आप सुन सकते हैं फिल्मी देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देशरागनी। इसी समय FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम भी सुन सकते हैं। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का प्रसारण मीडियम वेव पर भी किया जाएगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल 8:30 पर आप विभिन्न कलाकारों का गायन सुन पाएंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का समय रहेगा कल दिन में 9 बजे। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप गंगूबाई हंगल का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुन पाएंगे। गीत गाता चल फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दिन में 10 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनिए कल दिन में 11 बजे। RD बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार गीतों का आनंद लीजिए कार्यक्रम एक ही कलाकार में कल दिन में 11:30 पर। 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम, 12:30 का समय रहेगा मलयालम कार्यक्रम का। 1:10 पर सुनिए समूह गान शिक्षा का कार्यक्रम आओ हिलमिल गाए। आपके नाम फिल्मी पैगाम व्हाट्सएप पर आधारित ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 1:30 पर। दोपहर 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद हमारी दूसरी सभा की समाप्ति होगी, लेकिन हम आपसे जुड़े रहेंगे FM 100.9 MHz हमारे लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स के साथ। 3:30 पर सुनिए बोलते नगमों का कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ। 4:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें कल कलाकार होंगे पंकज उदास, अशोक खोसला और भूपेंद्र सिंह। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा शाम 4:40 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम आप सुन सकते हैं 4:45 पर। शाम 5 बजे आनंद लीजिए तमिल कार्यक्रम का और 5:30 पर बंगला कार्यक्रम होगा। शाम 6 बजे कृषि जगत रिमिक्स गीतों का कार्यक्रम पॉप मसाला का समय रहेगा कल संध्या 6:30। 7:05 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जनसूचनाएं आप सुन सकते हैं 7:15 पर। 7:20 पर कार्यक्रम होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 7:30 पर सुनिए युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी। रात 8 बजे चित्रपट संगीत। 8:30 पर रोजगार समाचार और चंद देशभक्ति गीत पेश किए जाएंगे। रात 10 बजे आपके मनोरंजन के लिए पेश किया जाएगा व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम संदेशे आते हैं। ये थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। इस समय शाम के 4:45 हुए हैं। श्रोताओं, अब समय है आपके मनोरंजन का। आपके मनोरंजन के लिए हम लेकर आ रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम का ये पहला गीत हमने लिया है सड़क फिल्म से, आवाजें मनहर उदास और अनुराधा प्रोडवाल की, गीत रचना समीर और सुरेंद्र सेठी की है, संगीत नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, अगली पेशकश समीर की लिखी रचना, संगीत दिया नदीम श्रवण ने, आवाज कुमार सानू की। इस गीत को हमने लिया है आशिकी फिल्म से।

श्रोताओं, आप सुनते हैं इस कार्यक्रम का अंतिम गीत। स्वर दिया अनुराधा पोडवाल ने, गीत रचना

आमिर खान और पूजा भट्ट की है, संगीत नदीम श्रवण का, फिल्म है दिल है कि मानता नहीं।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे है। अब लीजिए सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: ஆகாஷ்வாணி ஸ்ரீ விஜயபுரம் வானொலி நிலையம் வழங்கும் தமிழமுதம். வணக்கம் நேர்களே.

0: श्रोताओं, अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। अब सुनते हैं बंगला कार्यक्रम।
1: नमस्कार, शुभ सन्ध्या। আমার সকল শ্রোতা বন্ধুদের স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের সান্ধ্য বাংলা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হচ্ছে আকাশবাণী শ্রী বিজয়পুরম কেন্দ্র থেকে।

श्रोताओं, अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6 बजे है और श्रोताओं, अब समय है व्हाट्सएप पर आधारित महिलाओं की फरमाइश पर फिल्मी गीतों के कार्यक्रम संगीत संगनी का।

नमस्कार दोस्तों, संगीत संगिनी कार्यक्रम में मैं मंजीत आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का है और इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं महिलाओं की फरमाइशों को। तो सखियों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने पसंद के गीत सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप संदेश जरूर भेजें। संदेश भेजने के लिए हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर दोहरा रही हूँ, 9474234000। सखियों, संदेश भेजते समय अपना नाम और पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल जरूर लिखें। हर रविवार इसी समय यानी संध्या 6 बजे हम आपकी फरमाइशों को संजोकर पेश करेंगे आपका अपना कार्यक्रम संगीत संगिनी।

श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सबसे पहले सुनते हैं फोनिक्स बे से देविका मिंज की फरमाइश पर अपना सपना मनी मनी फिल्म का गीत, आवाज मीका सिंह की।

अभी आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज में दिल तो बच्चा है जी फिल्म का गीत। इस गीत की फरमाइश की थे श्रुति राठौर ने कामराज नगर से। अब सुनते हैं धड़कन फिल्म का एक गीत। इस गीत की फरमाइश करने वाली है सफीना बेगम बम्बू फ्लैट से।

श्रोताओं, इस गीत की फरमाइश आई है हमें बड लाइन से जयश्री की। फिल्म है दिल तो पागल है, आवाज़ें लता मंगेशकर और उदित नारायण की।

श्रोताओं, अब सुनते हैं इस कार्यक्रम में अंतिम फरमाइश। जानम समझा करो फिल्म से। इस गीत की फरमाइश की है कैंपबेल बे से सरबजीत कौर ने।

इस गीत के साथ ही सखियों, मैं आपके फरमाइशी गीतों के सिलसिले को विराम देती हूँ। अगले रविवार संध्या 6 बजे हम आपके संदेशों के जरिए आपके पसंद के गीत लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप संगीत संगिनी कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। तो श्रोताओं, अब हम सुनेंगे कार्यक्रम धरती के गीत। इस कार्यक्रम के तहत आज पेश है हिमाचली लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप धरती के गीत कार्यक्रम के तहत हिमाचली लोकगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:45 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए गौरव गान।

एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों 31 जुलाई 2026 तक की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://award.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। ये थी आवश्यक सूचना।

श्रोताओं, आपको पुनः याद दिला दूं, युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी का समय रहेगा संध्या 7:30, जिसमें आप लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर्स सुन सकते हैं। रात 8 बजे आप आनंद ले सकते हैं फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का।

कल सुबह 6:15 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम इंद्रधनुष, जो केंद्रित होगा तस्वीर शीर्षक पर।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:05 होने वाली है।

0: अब से कुछ ही देर में आप प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सुनेंगे, इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: राष्ट्रीय पोलियो चक्र 31 जनवरी 2021।
2: नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल ना जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, दो बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार।
1: जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: दी, ये देख कैसे।
4: हैप्पी बर्थडे भाई।
3: दीका,
5: हाँ मेरा फेवरेट कलर
4: हमेशा शॉपिंग।
6: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
7: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
8: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
6: आई नो ना।
8: RBI कहता है,
9: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
10: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने सोने की खरीदारी से बचने और विदेश यात्रा ना करने की अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। द्वीप समूह में आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया और सूचना प्रचार एवं पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित साउथ टू नॉर्थ अंडमान राइड का समापन हो गया।

0: सांधी समाचारों की साथ में अनामिका सेनगुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा है कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के एक आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
1: साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में जरा भी ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और साउथ टू नॉर्थ अंडमान राइड। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज पोलियो टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। इस अभियान के तहत पूरे द्वीप समूह में कुल 447 टीकाकरण बूथ स्थापित किए गए थे। इसके अलावा बस टर्मिनलों, बंदरगाहों, अंतर्द्वीपीय जहाजों और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टीकाकरण के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। अभियान के पहले दिन 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 18,958 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई, जिसके अंतर्गत दक्षिण अंडमान जिले में 96%, मध्योत्तर अंडमान जिले में 100.6% और निकोबार जिले में कुल 101.3% बच्चों को कवर किया गया। कल और 30 जून को घर घर जाकर पहले चरण के दौरान छूटे हुए बच्चों की पहचान कर उनका टीकाकरण किया जाएगा। इस अभियान का राज्य स्तरीय उद्घाटन शहरी स्वास्थ्य केंद्र जंगलीघाट में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. एच.एम. सिद्धाराजू ने बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक पिलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने संबोधन में सार्वभौमिक टीकाकरण के महत्व पर जोर दिया। सूचना प्रचार एवं पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित 5 दिवसीय साउथ टू नॉर्थ अंडमान राइड डिगलीपुर के विवेकानंद स्टेडियम में संपन्न हो गया। इस पहल में विभिन्न व्यवसायिक पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 बाइकर्स ने भाग लिया। इस राइड का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय व्यवसायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना और द्वीपों के विभिन्न हिस्सों में जन संवाद को मजबूत करना था। समापन समारोह में सहायक वन संरक्षक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने यात्रा के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने युवाओं को पर्यटन, आतिथ्य, उद्यमशीलता, कौशल विकास और स्वरोजगार के क्षेत्रों में अवसरों को तलाशने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने जिम्मेदारी से राइडिंग करने और सड़क सुरक्षा के महत्व पर विशेष जोर दिया। वार्ड नंबर 3 के वार्ड पार्षद रमजान अली ने अनारकली निवासी सेवानिवृत्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट टी गणपति

के निधन पर शोक प्रकट किया है। लंबी बीमारी के बाद आज उनका निधन हो गया। वे 78 वर्ष के थे। शव यात्रा कल उनके निवास स्थान से दिन में 11 बजे से आरंभ होगी। और अब मौसम। अगले 6 दिनों के मौसम संबंधी पूर्वानुमान के अनुसार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को 30 जून से 2 जुलाई के बीच समुद्र में न जाने की

0: इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को 30 जून से 2 जुलाई के बीच समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान का बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने सोने की खरीदारी से बचने और विदेश यात्रा न करने की अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। द्वीप समूह में आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया और सूचना प्रचार एवं पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित साउथ टू नॉर्थ अंडमान राइड का समापन हो गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन।
3: बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
4: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
4: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
4: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
5: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
6: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर, यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:15 हुए हैं। अब सुनते हैं मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जनसूचनाएं। सबसे पहले मौसम।

मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है, पर मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी दी जाती है कि समुद्र में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने तथा इसके बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने की भी संभावना है। इस कारण समुद्र अशांत रहेगा, इसलिए मछुआरों को 29 तारीख तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। परसों तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनते हैं जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

भी भारत सीमा कल 29 तारीख को रात 8 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर जाएगा। इस जलयान की वापसी अगले दिन 30 तारीख को दोपहर 2 बजे इसी मार्ग से होते हुए डिगलीपुर से श्री विजयपुरम के लिए होगी। 1 तारीख को सवेरे 7 बजे MV जॉलीबर श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए छूटेगा। ये जलयान अगले दिन 2 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। MV रानी लक्ष्मी 3 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान भी मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर जाएगा। 4 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए ये जलयान श्री विजयपुरम वापसी करेगा। MV भारत सीमा 4 तारीख को रात 8 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए रवाना होगा। वापसी यात्रा होगी अगले दिन 5 तारीख को दोपहर 2 बजे। श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान के लिए MV कालीघाट 30 तारीख को रात 9 बजे अपनी यात्रा आरंभ करेगा। अगले दिन 1 तारीख को सवेरे 8 बजे ये जलयान लिटिल अंडमान से छूटकर श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। MV रानीचंगा 1 तारीख को प्रातः 6:30 पर श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान जाएगा और उसी दिन 1 बजे लिटिल अंडमान से छूटकर श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। MV नॉर्थ पैसेज 2 तारीख को सवेरे 6:30 पर श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान के लिए छूटेगा। उसी दिन 1 बजे ये जलयान लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। 3 तारीख को रात 8 बजे MV सेंटिनल श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान जाएगा। इस जलयान की वापसी होगी 4 तारीख को सवेरे 8 बजे। यही जलयान 5 तारीख को सवेरे 7 बजे भी श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान के लिए रवाना होगा। उसी रात 8 बजे ये जलयान लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। MV कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार के लिए 3 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। अगले दिन 4 तारीख को शाम 4 बजे ये जलयान कार निकोबार से छूटेगा और उसी बंदरगाह

होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। इस जलयान की अगली यात्रा श्री विजयपुरम से कार निकोबार के लिए 7 तारीख को दिन में 3 बजे होगी। 8 तारीख को ये जलयान शाम 4 बजे कार निकोबार से छूटेगा और लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। MV सेंटिनल 9 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान कार निकोबार चौरा तरासा कचाल ननकौरी माकाचुआ और अफरा बे होते हुए कैंबल बे के लिए रवाना होगा। 13 तारीख को प्रातः 5 बजे यह जलयान कैंबल बे से छूटेगा और इन सभी बंदरगाहों से होते हुए श्री विजयपुरम जाएगा। MV कैंबल बे कल 29 तारीख को रात 9 बजे श्री विजयपुरम से ननकौरी होते हुए कैंबल बे के लिए छूटेगा। 1 तारीख को दिन में 10 बजे यह जलयान कैंबल बे से ननकौरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। 7 तारीख को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से ननकौरी होते हुए कैंबल बे के लिए जलयान नालंदा अपनी यात्रा आरंभ करेगा। 9 तारीख को सवेरे 8 बजे ये जलयान कैंबल बे से ननकौरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। यही जलयान 14 तारीख को सवेरे 9 बजे भी श्री विजयपुरम से ननकौरी होते हुए कैंबल बे के लिए छूटेगा। इस जलयान की वापसी 16 तारीख को सवेरे 8 बजे कैंबल बे से इसी बंदरगाह होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। इस जलयान यानी नालंदा की ननकौरी होते हुए कैंबल बे के लिए अगली यात्राएं 21 तारीख और 28 तारीख को भी होगी। ये था जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। अब सुनते हैं जनसूचनाएं। गैर कानूनी कृत्यों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग करने की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है 112-03192-232-100, 03192-233-077 और 03192-232-400। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। ये थी जनसूचनाएं।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। इस समय संध्या के 7:20 हुई है। श्रोताओं, अब समय है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का।

श्रोताओं, इस गीत को हमने लिया है काल फिल्म से। आवाज़ें कुणाल गांजावाला की और रवि राग की। गीत रचना शब्बीर अहमद की है और संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने।

श्रोताओं, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में सौतन फिल्म के इस गीत के साथ ही हमारा दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम समाप्त होता है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:30 हुए। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम युवाणी। इस कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो म्यूजिक लवर्स।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को आपकी रेडियो दोस्त लता राज नंदिनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज रविवार है और आज के दिन हम आप सभी युवा दोस्तों के लिए लेकर आते हैं आपका पसंदीदा लाइफ फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर्स।

0: दोस्तों, इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में हमसे जुड़ने और अपने मनपसंद गाने सुनने के लिए कॉल करें इन नंबरों पर 232-540 और 232-558। हमारा STD कोड है 031192। तो दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जुड़ते हैं हमारे पहले श्रोता से। हेलो म्यूजिक लवर्स।
1: हेलो म्यूजिक नवर, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, मेरी किन से बात हो रही है?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: जी राकेश जी, कैसे हैं आप?
1: जी बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा है। मौसम भी ठंडा ठंडा है
0: जी,
1: और इस वक्त जो है आपके बाहर बैठा हूँ आंगन में और ठंडी ठंडी थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है।
0: अरे वाह अरे वाह। वैसे आपका दिन कैसे बीता? आज रविवार है, छुट्टी का दिन है।
1: जी जी बहुत अच्छा बीता है। खासकर जो है आपके प्रोग्राम में कॉल लगा और सबसे बड़ी बात है आज तो लकी चांसेस रहा, सुबह 10 बजे था हेलो फरमाइश।
0: जी जी,
1: तो उसमें मेरा पहला कॉल लगा, तो आज भी इधर भी पहला कॉल लगा, तो बहुत अच्छा दिन गया आज मेरा।
0: अरे वाह अरे वाह, हमें भी बहुत खुशी हुई कि आपका दिन इतना अच्छा बीता और आप बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तो
1: जी
0: वैसे
1: जी जी जी
0: जी, तो आपकी इस खुशी को दोगुना करने के लिए आप आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज मुझे गाना सुनना है बरसात मूवी का,
0: जी
1: दिल पागल दीवाना।
0: जी, और आप ये
1: जी
0: गीत किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे राकेश जी?
1: सबसे पहले तो ये आपको गाना डेडिकेट करेगा
0: जी धन्यवाद।
1: पूरन वर्मा जयपुर राजस्थान से, अविनाश तेली, भगवान सिंह परमार, मांगीलाल चंदेल और मोनिका जी हैं और पूर्णिमा जी हैं और सत्युन जी, विष्णु कुंडू है और रामदेश कंजर है, अमर सिंह साहू है और तमाम सुनने वाले श्रोता जिनका भी नाम छूट गया उनके लिए भी गाना डेडिकेट रहेगा।
0: जी जी राकेश जी, तो ठीक है, हमें आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और अब वक्त हो चला है कि हम आपको और आपके सभी दोस्तों को आपका ये मनचाहा गीत सुनवाएं।
1: जी जी धन्यवाद।

0: हेलो म्यूजिक लवर्स
1: नमस्ते मैम,
0: जी
1: राधे
0: जी नमस्कार। मेरी किनसे बात हो रही है?
1: जी। मैं त्रिपुरा से संगीता देवनाथ बोलती हूँ।
0: जी संगीता जी, कैसी हैं आप?
1: मैं तो बहुत अच्छी हूँ मैम, आप कैसी हो?
0: जी मैं भी ठीक हूँ। वैसे बताइए, आज आप इस शाम कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: जी, फिल्म का नाम है साजन
0: जी
1: और गाने का बोल है मेरा दिल भी कितना पागल।
0: जी और आप ये गीत किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगी?
1: जी, पहले मैम आपको सुनाना चाहती हूँ,
0: जी धन्यवाद।
1: और दिल्ली से धर्मवीर जी,
0: जी
1: राकेश जी,
0: जी
1: और विजयपुर से पूर्णिमा दीदी,
0: जी
1: मोनिका दीदी, जया दीदी और सप्तमी दीदी,
0: जी तो
1: और
0: ठीक
1: जितने भी आप भी सुन रही है सबको सुनना
0: जी जी संगीता जी, तो ठीक है, आइए हम आपको और आपके सभी दोस्तों को सुनवाते हैं आपका ये मन चाहा गीत।

0: हेलो म्यूजिक लवर्स,
1: जय माता
0: जी
1: दी।
0: नमस्कार। मेरी किनसे बात हो रही है?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान
0: जी
1: गांव का अंशमहल बोला।
0: जी तो कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हूँ मैडम, आप सुनाओ। राजस्थान
0: जी मैं भी ठीक हूँ। वैसे राजस्थान का मौसम कैसा है?
1: में मैडम बादल छा रहे हैं और
0: जी
1: बरसात का आती है, पर थोड़ी बहुत छाटा छटके वो आके चल रहा है, तो इतनी खास बरसात नहीं आ रही।
0: अच्छा। तो आपका दिन कैसा बीता? आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, तो क्या क्या किया आपने? घूमने गए कहीं पे?
1: जी मैडम, घूमने तो घर नहीं गए क्योंकि हम किसान लोग हैं, तो हम खेती
0: अच्छा
1: बाड़ी से ही घर पे रहते हैं। और अभी तो
0: जी,
1: मैं यहाँ मंदिर गया था, माता रानी की भंडारा खा के आया हूँ मैडम
0: अरे
1: जी।
0: वाह अरे वाह। तो जी, बहुत अच्छा। तो बताइए, अभी आपने अपने खेतों में किन फसलों की खेती कर रखी है?
1: जी मैडम, अभी खेत खाली है और उसके बाद अब थोड़ी बारिश हो जाए तो फिर वो बाजरा
0: अच्छा,
1: की
0: तब
1: फसल
0: होगी।
1: गंवा।
0: जी, चलिए बहुत खूब। वैसे आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे इस कार्यक्रम में?
1: जी मैडम, फिल्म का नाम है घरवाली और बारवाली, और इसमें
0: जी
1: एक गाना है सर ऐसा कुछ गाना है,
0: जी जी जी कुमार
1: वो
0: सानू
1: भी
0: द्वारा।
1: हाँ कुमार सानू।
0: जी,
1: और ये गाना सबसे पहले आप है
0: जी
1: और मेरा दोस्त है राकेश है, भगवान सिंह जी, अभिनाथ जी, रमेश प्रजापति जी है, गोल्डी भाई है, अमल है, विमल है, पूर्णिमा मैडम विजयपुरम से, और
0: जी
1: तमाम श्रोता सुनने वाले
0: जी
1: उसी वालों।
0: जी तो ठीक है पूरण वर्मा जी, हमें आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं कि जो गीत अभी हम भिजवा रहे हैं राजस्थान, वो भी आपको पसंद आएगा।

0: हेलो म्यूजिक लवर्स
1: हेलो हेलो म्यूजिक लवर्स,
0: जी
1: गुड इवनिंग।
0: जी नमस्कार, मेरी किन से बात हो रही है?
1: गुड इवनिंग।
0: जी जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है?
1: जी, एकदम ठीक ठाक।
0: जी जी कैसे हैं आप?
1: अरे मसला बहुत अच्छा हो,
0: जी
1: बढ़िया हो, और खास करके आपने फोन उठा लिया,
0: जी
1: बाकी मतलब दिल खुश हो गया। जी,
0: जी जी कहाँ से हैं आप वैसे?
1: मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर
0: जी
1: रहा हूँ।
0: जी
1: मेरा गांव का नाम है राम कृष्ण नगर,
0: जी
1: डिस्ट्रिक्ट करीमगंज,
0: अच्छा,
1: आसाम से ताल्लुका से।
0: अरे वाह, इतनी सुंदर जगह आप में रहते हैं आप, तो हमें भी बताइए असम के बारे में, कुछ खास जगहों के
1: जी
0: बारे
1: जी
0: में।
1: जी क्या क्या होता है, मतलब असम के सिनेरियो जो है, नैसर्गिक जो ये है, बहुत अच्छी है। चारों
0: जी
1: ओर हरियाली और रास्ता,
0: जी
1: हरियाली और चाय के बागान, चाय
0: बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ
1: के
0: की खासियत
1: बागीचा
0: है।
1: एकदम अवेलेबल है। और
0: जी
1: खास
0: जी
1: करके हमारे यहाँ पे नीलाचल पहाड़ के पर
0: जी
1: माँ कामाख्या का मंदिर है,
0: जी
1: बड़ा
0: जी
1: मंदिर है।
0: जी
1: अंबुबाची में बड़ा बड़ा ये होता है, मेला
0: जी अभी माँ कामाख्या
1: होता
0: के
1: है।
0: मंदिर में दर्शन वगैरह चल रहे हैं, मैंने सुना है।
1: जी जी जी
0: जी
1: जी
0: जी
1: आध्यात्मिक परिमंडल है बहुत,
0: जी
1: क्या
0: चलिए
1: कहूँ, मतलब बयां नहीं कर सकता।
0: बहुत सुंदर से राज्य में रहते हैं
1: जो
0: आप।
1: भी बताएंगे कम पड़ जाएंगे, है ना।
0: जी जी जी चलिए, बहुत खूब, आप इतनी सुंदर सी जगह में रहते हैं। वैसे आज आप कहीं घूमने गए? आज रविवार का दिन है।
1: जी, आज रविवार। मैं ऐसे में ईमानदारी से कहूँ तो मतलब मैं साइन बोर्ड लिखता हूँ,
0: अच्छा
1: साइन बोर्ड लिख के मैं आया आया हूँ, और आके मैं
0: जी
1: ट्राई करना शुरू कर दिया। और एक एक तरीके से क्या हुआ, मेरा
0: जी
1: फोन आपने उठा लिया, एकदम दिल दिल के गिटार के तार झन झनाते,
0: जी, चलिए शुरू को और
1: ऐसे
0: भी,
1: होता है।
0: जी शुरू को
1: जी
0: और भी छेड़ते हैं और जानते हैं कि आज आप
1: जी
0: कौन सा गीत सुनना
1: आज
0: चाहेंगे।
1: आज एक गाने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ।
0: जी
1: अच्छा मैम, आपका ये जो आपका बात, तो मेरा जो कहना है, इसमें
0: जी
1: इको हो रहा है, इको हो रहा है।
0: अच्छा, एको हो रहा है सर, एक सेकेंड। जी जी मुझे
1: जी,
0: एक मिनट
1: चलिए कोई
0: दीजिए।
1: बात नहीं, कोई बात
0: जी
1: नहीं।
0: अब
1: तो
0: ठीक है।
1: आज ये गाने गाने का फरमाइश है, प्रेम गीत फिल्म का एक गाने है,
0: जी
1: और बहुत अच्छे अच्छे कोटि के एक गायक कलाकार है, जगजीत सिंह जी,
0: जी
1: उसके गायन पर वो गाना है।
0: जी
1: होटो पे खोलो तुम मेरा गीत अमर कर दो, ऐसे करके
0: अरे
1: गाने
0: वाह,
1: हैं।
0: बहुत ही सुंदर गीत आपने
1: जी,
0: चुना।
1: और
0: जी
1: कुछ दोस्तों को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: पहले हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, जिसका नाम है अविनाश जी है, प्रेमजीत चक्रवर्ती जी है,
0: जी
1: अमर सिंह साहू जी है, कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार जी है, श्रीकांत
0: जी
1: जोशी जी है, विजय सिंह लखेरा जी है,
0: जी
1: और सतीश भाई के लिए। जी
0: जी तो ठीक है, हमें आपसे बात करके काफी अच्छा लगा अनूप जी।
1: जी जी
0: जी
1: जी
0: आप
1: जी
0: खुश रहिए, स्वस्थ रहिए
1: जी जी
0: और ऐसे ही।

0: श्रोताओं, अभी आप युवाणी कार्यक्रम में लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे है और अब समय है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सबसे पहले सुनते हैं अनुराधा पोडवाल की आवाज में फितरत फिल्म का गीत। गीत रचना नीदा फाजली की है और संगीत उषा खन्ना का।
1: आइए सुने कार्यक्रम

श्रोताओं, तकनीकी खराबी की वजह से हम आपको फितरत फिल्म का ये गीत नहीं सुनवा पा रहे हैं, तो अब लीजिए सुनिए ज्ञानी जी फिल्म का गीत, आवाज़ आशा भोसले की।

श्रोताओं, अब सुनते हैं हवस फिल्म से एक गीत। आवाज मोहम्मद रफी की, गीत रचना सावन कुमार की और संगीत उषा खन्ना का।

अगली पेशकश बोल लिखे हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का, स्वर मोहम्मद रफी का, और इस गीत को हमने लिया है गबन फिल्म से।

इस समय आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में गंगा जमुना फिल्म का गीत। गीत रचना वैजयंती माला की और संगीत नौशाद का।

इस समय आप सुन रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार अरशद भोपाली की लिखी रचना, स्वर आशा भोसले का, और फिल्म है गंगा और सूरज।

अगली पेशकश गैर कानूनी फिल्म से, आवाजें आशा भोसले और किशोर कुमार की। गीत के बोल लिखे हैं इंदुवर ने और संगीत दिया बप्पी लहरी ने।

0: बोल बोला बोल बोला बोल बोला
1: कल कोला बोल कोला कल कोला बोल कोला बोल कोला बोल बोला सारे शहर में

श्रोताओं, अब सुनते हैं इस कार्यक्रम की अंतिम पेशकश जो हमने ली है गजब तमाशा फिल्म से। आवाज़ कुमार सानू की, गीत रचना समीर की है और संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

0: आठ नौ दस इतना ही सोचो बस।
1: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब सुनेंगे रोजगार समाचार, तत्पश्चात देशभक्ति गीत। सबसे पहले सुनते हैं रोजगार समाचार।

अंडमान लोक निर्माण विभाग APWD में कार्यपालक अभियंता सिविल यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के 7 पदों को प्रतिनियुक्ति ISTC के आधार पर प्रारंभिक 2 वर्ष की अवधि के लिए भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वेतन लेवल 11 ग्रुप ए राजपत्रित गैर मंत्रालिक नियुक्ति अनुबंध के आधार पर होगी। अभ्यर्थियों को इनमें से कोई एक शर्त को पूरी करनी होगी। मूल विभाग कैडर में समान पद पर नियमित रूप से कार्यरत अधिकारी या पे मैट्रिक के लेवल 9 में नियमित नियुक्ति के बाद कम से कम 5 वर्ष की सेवा या पे मैट्रिक के लेवल 7 में नियमित नियुक्ति के बाद कम से कम 7 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग की पार्ट ए पार्ट बी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अभ्यर्थियों को सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए। प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आवेदन प्राप्ति के अंतिम तिथि पर आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रारंभिक प्रतिनियुक्ति की अवधि 2 वर्ष होगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में बायोडाटा 2 प्रांतियों में विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट पिछले 5 वर्षों का अपार ACR प्रांतीय भी लगानी होगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन उप सचिव PWD अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय कक्ष संख्या 139 श्री विजयपुरम में 18 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय विभाग से संपर्क किया जा सकता है। ये थी रोज का समाचार। अब सुनते हैं चंद देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप देशभक्ति गीत सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 8:45 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में समाचारों का प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल्स में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। यह पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यह सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व, विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र

0: जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive. We both seek a world where international institutions reflect contemporary realities. We believe that our shared future must be shaped collectively, inclusively and fairly.
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीपराष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि यह सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि यह सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षो में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद

0: व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
2: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूव्र संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप्प हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री

0: अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ तबला रिसाइटल बाय पंडित सुधीर पांडे. पंडित सुधीर पांडे इज रेकग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फोरमोस्ट तबला वर्ट्यूसो. ही रिसीव्ड हिज रिगरस ट्रेनिंग फ्रॉम हिज रेवर्ड फादर एंड गुरु लेट पंडित अर्जुन पांडे एंड हिज दादा गुरु पंडित भागवत सिंह. Inheriting the rich traditions of the Banaras, Delhi and Arjada Gharanas. Drawing upon the finest elements of these three illustrious traditions, his gurus evolved a unique style of tabla playing known as Ladant Ka Baj, of which Panditji is among the leading exponents today. His artistry is characterized by the balanced and powerful use of both hands, crystal clear articulation of bowls, intricate rhythmic architecture, innovative presentation, and the scholarly rendering of rare traditional compositions preserved through the sacred Guru Shishya Parampara. Through his performances at prestigious festivals and concerts, he has earned immense admiration from musicians, connoisseurs and music lovers alike.
1: आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं घनश्याम सिसोदिया. पंडित सुधीर पांडे अपने कार्यक्रम का आरंभ तीन ताल से कर रहे हैं.
0: In tonight's program, he is accompanied on sarangi by Ghanshyam Sisodia. He is presenting tabla recital in taal, teen.

Begin the cut, the cut,

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित सुधीर पांडे का तबला वादन। अभी आप सुन रहे थे ताल तीन ताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे थे घनश्याम सिसोदिया। और इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: यू जस्ट हर्ड ताल तीन ताल प्लेड ऑन तबला बाय सुधीर पांडे। ही वॉज अकम्पनीड ऑन सारंगी बाय घनश्याम सिसोदिया। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी है। आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री

0: आप रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एन एस कल्याण रामन द्वारा प्रस्तुत मृदंगम पर लाइव विन्यासम सुना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी विजयवाड़ा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है। अगले कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: You have been listening to Laya Vinyasam on Mridangam by Sri N.S. Kalyanuraman in the Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. This program was recorded in the studios of Akashvani Vijayawada, and this broadcast came to you from the studios of Akashvani Delhi.
2: Medium wave 438.6 meter अर्थात 684 kHz और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 11 बजे हैं। अब सुनते हैं मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है, पर मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी दी जाती है कि समुद्र में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने तथा इसके बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने की भी संभावना है। इस कारण समुद्र अशांत रहेगा, इसलिए मछुआरों को 29 तारीख तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। परसों तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। ये थी मौसम की जानकारी। इसके साथ ही हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी।
1: हेलो।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 8वीं तिथि तदनुसार 29 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:28 और 40 सेकंड हुए हैं। अपनी आज की पहली सभा में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।